श्री राम लला भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रानंदन भगवान की, श्री चारो भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की, प्रातः

लला की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री रमापति रामचंद्र की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय। बोलो भाई।

भर्जनम भवबीज।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

आदराब हर अभिनंदन आदाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग श्रोताओं, आज शुक्रवार है, 7 अगस्त 2026, पंचांग शक्सम्वत 1948 के श्रावण महीने की नौमी तिथि। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण प्रारंभ होता है। आपका उद्घोषक इकबाल कादिर उपस्थित है आज का ये विशेष प्रसारण लेकर। हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करें। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 36वां दिन है। हम सभी यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा की कामना करते हुए आज के इस विशेष प्रसारण का आरंभ करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन IR की आराधना चैनल DTH तथा हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। अगर आप भी इस प्रसारण का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम तक अपनी कोई बात, अपना कोई सुझाव, अपनी कोई शिकायत पहुँचाना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियोज़ के हेल्पलाइन नंबर 9596-990-954 पर SMS या WhatsApp के ज़रिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी है akashvanibaltal@gmail.com। इसी तरह से श्रीनगर और जम्मू अजला के लिए दो हेल्पलाइन नंबर्स, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स भी मफाद आमा में जारी किए गए हैं, जिसका उपयोग करके, जिसकी मदद से आप प्रशासन से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अपना कोई भी सुझाव उन तक पहुंचा सकते हैं, अपना कोई भी जो है अपनी कोई भी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। श्रीनगर के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-7199। इसके अलावा जम्मू के लिए ऐसा ही एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-7198। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 36वां दिन है। श्रोताओं, आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है। हिंदू धर्म में श्रावण मास को बहुत ही मुकद्दस माना जाता है और यह महीना खास तौर पर भगवान शिव की आराधना और पूजा के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। श्रावण के पूरे महीने में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और आदि सामग्री चढ़ाते हैं। माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव की भक्ति, व्रत, दान पुण्य और पूजा पाठ करने से आत्मिक शांति हासिल होती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ख़ास तौर पर श्रावण सोमवार को बहुत ही अहम माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। इसी तरह श्रावण मास सिर्फ मजहबी आस्था का महीना ही नहीं बल्कि आत्मसंयम, भक्ति, दान पुण्य और आत्मिक शांति का भी संदेश देता है। और जो दुनिया के बाकी धर्म हमें संदेश देते हैं, पैगाम देते हैं, हमें उन्हें भी याद रखना चाहिए और जो उनमें अच्छी अच्छी बातें हैं वो अपने लिए अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। बातें तो हर एक धर्म की हमारे सराखों पर है, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे के, जो बहुत सारे धर्मों की कॉमन है, आम है एक दूसरे के धर्मों में, जैसे आत्मसम्मान या दूसरों की मदद करना, आत्मसंयम हो, दान पुण्य हो, या आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करना हो, या अपनी भगवान की पूजा करना हो। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें

एक दूसरे के मज़हबों की जो है इज़्ज़त करनी चाहिए, और जो भी उनमें अच्छी अच्छी बातें हैं उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण जारी है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पहले सत्र में जैसा कि आपको मालूम है, हम घाटी में मौजूद हमारे विभिन्न संवाददाताओं से बात करते हैं, उनसे यात्रा के बारे में

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH तथा हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। हमारा पहला सत्र मबनी होता है हमारे जो घाटी के विभिन्न भागों में हमारे संवाददाता होते हैं, और जम्मू डिवीज़न में जो हमारे संवाददाता होते हैं। सबसे पहले हम जम्मू आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता जावेद मेहराब के पास। जावेद साहब, आपका खैर मकदम है आज के इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, बहुत शुक्रिया आपका। पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा का सिलसिला यहाँ पहले निवास स्थान भगवती नगर से जारी है। श्रद्धालु संख्या में कम जरूर हुए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शन करने की आस्था विश्वास आज भी उसी जोश जज्बे के साथ जारी है। और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अलावा प्रशासन के सभी संस्थान, निजी संस्थाएं और स्थानीय लोग श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुखद और आरामदेह बनाने के लिए हर संभव प्रयास को जारी रखे हुए हैं। लगातार यहाँ निवास स्थान पर श्रद्धालुओं के जत्थे यहाँ से रवाना होकर पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करते हैं और दर्शन कर वापस अपने घरों को भी लौट रहे हैं, और ये सिलसिला लगातार जारी है। वहीं आज भी निवास स्थान भगवती नगर से सुबह तड़के यहाँ से रवाना होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 926 रही। बालताल मार्ग से रवाना होने वाले इस जत्थे में शामिल पुरुषों की संख्या 693, महिलाएं 178, साधु 34 और साध्वी 21 शामिल रही। 45 वाहनों में सवार श्रद्धालु बाबा बर्फानी के द्वार की ओर अग्रसर है, और जानकारी अनुसार श्रद्धालुओं का ये जत्था अपने वक्त पर बाबा बर्फानी के मुख्य द्वार बालताल पहुंच जाएगा और उसके बाद पहाड़ी श्रृंखलाओं का सफर शुरू होगा। लगातार रवाना होने वाली बाबा बर्फानी की यात्रा और इसका प्रबंधन उसी क्रम के साथ जारी है। और मैं बताऊं आपको कि पहले निवास स्थान से लेकर पवित्र गुफा के आखिरी स्थान तक श्रद्धालुओं की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता के साथ जारी रखा गया है। यात्रा के दौरान अनुशासन और एडवाइजरी का पालन आज भी अनिवार्य है, और श्रद्धालुओं को भी इस दौरान मिलने वाली तमाम सुविधाओं में किसी भी तरह की कमी नहीं है और प्रबंधन उसी सेवा भाव के साथ जारी है। उम्मीद है कि यात्रा मौसम की परिस्थिति के दरमियान सुरक्षा के साथ जारी रहेगी। जी
0: जी, आज यात्रा का 36वां दिन है, और पिछले 36 दिनों में हमने कई बार देखा कि यात्रा सस्पेंड भी हुई, और उसकी जो भी वजूहात थी, चाहे मौसम का इसमें अमल दखल हो या दीगर जो सड़क का हाल, हमने देखा कि सड़क जो हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कई दिनों तक बंद रही, लेकिन उसके इस पर यात्रा पर कोई असर नहीं हुआ। इससे हमें बहुत खुशी मिलती। और जो नए यात्री आते हैं, क्या उनकी सुविधा में, क्या उनकी जो उनके सुविधा के लिए जो इंतज़ाम किए गए हैं उनमें किसी तरह का कोई बदलाव किया गया है, या जो यात्री यहाँ से यात्रा करके वापस जाते हैं उनके साथ आपकी बातचीत होती है, कैसा एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं?
1: देखिए, यात्रा के प्रबंधन के बारे में मैंने पहले ही कहा कि प्रबंधन जो है वो उसी क्रम से जारी है, और पहले निवास स्थान यहाँ भगवती नगर में यात्रा के दौरान अनुशासन और एडवाइजरी का पालन भी अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं को चाहे संख्या कम भी है, लेकिन उसके बावजूद जो क्रम बनाया गया है, जिस अनुशासन के साथ यात्रा पहले दिन से चल रही थी, उसे बिल्कुल पूरी तरह से उस पर अमल करने और उसको पालन करने की जो एडवाइजरी है उसे पूरी तरह से रखा गया है। और इस दौरान सुविधाओं में किसी तरह की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ जम्मू में खासतौर पर मैं बताऊँ आपको कि सावन के महीने में यहाँ स्थानीय मंदिरों, स्थानीय धर्म स्थलों में जिस तरह से पूजा अर्चनाएं हो रही है और श्रद्धालु इन पूजा

0: चुनावों में भी हिस्सा ले रहे हैं और पूरी तरह से माहौल जो है वो एकदम बेहतर है, भक्तिमय है माहौल। और वही हाल यहाँ भगवती नगर के निवास स्थान के परिसर का भी है, और यहाँ भी जहाँ एक तरफ प्रबंधन की सभी सुविधाएं आज भी पूरी तरह से उसी क्रम के साथ चल रही है, वही जो पूजा अर्चनाओं का, भजन कीर्तन का, और उसके अलावा जो स्थानीय कलाकार है वो किस तरह से जो श्रद्धालुओं का जो एंटरटेनमेंट है वो पूरी तरह से जारी है, और यहाँ स्थानीय कलाकार भी उन भजन कीर्तन में पूरी तरह से हिस्सा भी दे रहे हैं, और श्रद्धालु भी यहाँ इस परिसर में पूरी तरह से अपना जो पूजा अर्चनाएं हैं और भजन कीर्तन के साथ जो चल रहा इस खास तौर पर इस महीने में जो पूजाएं चल रही है वो पूरी तरह से जारी है। इस दौरान कई बार जैसे आपने कहा कि सड़क की बात जैसे आपने की, तो सड़क जो है वो पूरी तरह से मौसम की परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए आपने मौसम की परिस्थिति इसलिए कहा क्योंकि एक पूरा सफर ही मौसम की परिस्थिति के साथ जुड़ा हुआ है। कई बार यात्रा स्थगित भी हुई लेकिन उसका मलाल कहीं यात्रियों को इसलिए नहीं है क्योंकि प्रशासन उनकी सुरक्षा उनके प्रबंधन में किसी भी तरह का कोई कमी नहीं है, आज भी उसी सुरक्षा देने के साथ यात्रा बराबर निकलती है, और पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी श्रद्धालुओं की है, पहले वो निकलेंगे उसके बाद स्थानीय ट्रैफिक और खास तौर पर जो जम्मू कश्मीर के दरमियान जो वाहन चलते हैं उनको इजाजत होती है। तो ये प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता जम्मू कश्मीर सरकार की, उसके अलावा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की मैनेजमेंट, और उसके अलावा जो पूरी तरह से इसमें एडवाइजरी रखी गई है उसमें स्थानीय लोग भी अपनी तरफ से पूरी तरह से अपनी कुर्बानी देकर अपना वक्त श्रद्धालुओं को देकर इस यात्रा को पहली प्राथमिकता के साथ निकलने की इजाजत भी देते हैं, और इस दौरान जो सुरक्षा बल है वो भी सुबह सवेरे पूरी रात अलग अलग नाकों पर चाहे घाटी में हो या जम्मू में हो उनके साथ होकर उस सुरक्षा को बनाए हुए हैं, और पूरा वो घेरा आज भी उसी तरह से रखा गया है, और उसके अलावा जो प्रबंधन है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, आज भी सेवाएं उसी भाव से चलती है, चाहे वो लंगर समितियां हो, उसके अलावा चाहे अलग अलग जो चिकित्सा का या उसके अलावा पानी बिजली आराम योगा और तरह तरह की जो यहाँ भगवती नगर निवास स्थान में प्रबंधन रखे गए हैं वो पूरी तरह से उसी तरह से इंटैक्ट है, और श्रद्धालु भी कई बार स्थगित होने के बावजूद उनको इस बात का मलाल नहीं होता कि यात्रा स्थगित हुई। हालांकि परसों अगर यात्रा एक दिन पहले अगर यात्रा स्थगित हुई उसके बाद तीर्थ यात्रा को प्रायोरिटी के साथ प्राथमिकता के साथ जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जो मैन मेड मशीनरी है वो पहली प्राथमिकता के साथ सड़क को बिल्कुल ठीक करके पहले श्रद्धालुओं के जत्थे को ही चलने की इजाजत होती है।
1: जी क्या आपकी यात्रियों के साथ बात होती है, उनका फीडबैक कैसा है, मतलब उनको कश्मीर की मेहमान नवाजी और यहाँ का जो पूरा वातावरण है उसके बारे में उनका क्या कहना होता है?
0: देखिए श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना क्योंकि यहाँ जो जम्मू है वो ये यहाँ का मुख्य जो पर्यटक है वो धार्मिक पर्यटक है, और माता वैष्णो देवी का सबसे बड़ा त्यौहार, यहाँ लाखों श्रद्धालु यहाँ पूरे साल पहुंचते हैं, तो इस शहर में पूरी तरह से धार्मिक जो वातावरण है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है, और लोग जो है वो यहाँ धार्मिक पर्यटकों की पूरी तरह से सहायता भी करते हैं, उनके लिए सेवा भाव भी रखते हैं, और जो पर्यटक भी है उनकी किसी तरह से कोई शिकायत नहीं होती है क्योंकि यहाँ उस तरह का माहौल बना हुआ है, धार्मिक माहौल है, मंदिरों का शहर है, यहाँ तरह जगह जगह पर जो श्रद्धालु अलग अलग यहाँ प्राचीन मंदिरों में जाकर पूजा अर्चनाएं करते हैं, उसी तरह का जो माहौल उन्हें मिलता है उससे वो बिल्कुल संतुष्ट है, और जो प्रबंधन सरकार ने रखा है उसके अलावा जो जिस तरह की सुविधाएं सरकार ने यहाँ रखी है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और उन्हें भी उस तरह का कोई मलाल नहीं है कि श्रद्धालुओं के साथ किसी तरह की कोई नाइंसाफी होती है।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा है सुन के कि जम्मू में जो हमारे मेहमान आते हैं चाहे वो मजहबी यात्राओं के लिए आते हैं या लोकली वो वहाँ

0: जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनमें घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए सरकार हमेशा उनके साथ हैं, उनके समक्ष खड़ी है और उनकी सुविधा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसीली रिपोर्ट के लिए।
1: बहुत शुक्रिया।
0: ये थे हमारे जम्मू से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब, जो हमें जानकारी दे रहे थे जो यात्रा अमरनाथ जी यात्रा का आज 36वां दिन है, जो पिछले 35 दिनों में घटनाक्रम घटा है उसके हवाले से। आगे भी बात होती रहेगी, आगे भी हमारे संवाददाताओं से हम रिपोर्ट्स हासिल करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आप ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए और हमारे साथ बने रहिए।

0: जो है जम्मू से बालतल के लिए रवाना किया गया। आज अलल सुबह करीबन 3 बजे जम्मू से इसे रवाना किया गया, और अभी ये जो डैश है 42 गाड़ियों पर मुश्तमिल है। इसमें बसें हैं, गाड़ियां, कारें हैं, जीपें हैं, और कुल मिलाकर 926 यात्री आज की यात्रा में बालतल के रास्ते से भेजे जा रहे हैं, और अभी ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में बानहाल पहुंचने वाले हैं, जहां पर इनका सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह होगा। तो इसके बाद इन्हें वादी कश्मीर की तरफ बाजाबता जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसमें रवाना किया जाएगा।
1: जी
0: इस तरह जो भगवती नगर से अब तक अगर कहेंगे जो रवाना किए गए श्रद्धालु श्री अमरनाथ यात्रा की पवित्र गुफा की तरफ, तो वो 1,44,439 पहुंच गई है, और कुल मिलाकर जो सरकारी जो इदाद शुमार है उसके मुताबिक अब तक 4,70,000 से जायद यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं।
1: जी
0: आज इस दौरान जो बालतल से भी एक कानवाई वापस आ रही है जम्मू की तरफ, ये अभी कुछ वक्त के बाद यहाँ बानहाल में एंटर होगी, अभी ये चल रही है। तो इसमें जो बालतल की तरफ जो जा रहे हैं, आज बालतल से जम्मू जो जा रहे हैं, इसमें 133 यात्री हैं और 7 गाड़ियों में सवार है ये, तो ये भी कुछ वक्त के बाद यहाँ बानहाल पहुंचा चाहते हैं। इस दौरान जो मौसम है वो बादल है, सुबह से ही बादल है,
1: जी
0: और कल कल शाम को बहुत जोरदार बारिशें हुई करीबन 3-4 बजे बाद रामबन और उधमपुर के सेक्टर में। तो उस वजह से जो शाम के औकात में नेशनल हाईवे कुछ वक्त के लिए ब्रीफली रोक दी गई थी रामबन के उधमपुर के इलाके में, देवल वगैरह जो वहां पर स्लाइडिंग का सिलसिला पिछले कई रोज से जारी है, पिछले अगर
1: जी
0: कहेंगे तो 18 तारीख से ये सिलसिला वहां पर चल रहा है, तो जिसकी वजह से जो कहीं ना कहीं ट्रैफिक पर असर पड़ता है। लेकिन कल भी पड़ा, कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक रोक देना पड़ा, लेकिन बाद में इसे रेस्टोर किया गया। और अगर ये जो स्लाइडिंग हो रही है तो इसके बावजूद जो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि यात्रा को निकाला जाता है इस एरिया से। अलबत्ता बाकी जो भारी ट्रैफिक होता है हजारों की तादाद में, दिन में एक अंदाजे के मुताबिक 7 से 10 हजार गाड़ियां जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आती जाती हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए,
1: जी
0: उनको
1: जी
0: बेहतर तरीके से उनको पैसेज देने के लिए वहां पर जो काम शाम किया जाता है, तो उसके बाद उस ट्रैफिक को भी निकाला जाता हो। तो अभी जो श्री अमरनाथ यात्रा के दोनों काफले ऑन वे हैं, एक तो बानहाल पहुंच चुका है जो जम्मू से आया है, और जो कश्मीर से वापस बालतल से आया तो वो कुछ वक्त के बाद यहाँ बानहाल में पहुंचेगा। अभी वो यहाँ जो श्रीनगर जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट से होते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ बानहाल की तरफ, और यहाँ से इन्हें जम्मू की तरफ रवाना किया जाएगा। कुल मिलाकर जो हाईवे का ट्रैफिक है ये अब छोड़ दिया गया है। जैसे 7 बजे से जम्मू से तो ये नगरोटा से ट्रैफिक को अलाउ किया जाता
1: जी
0: है, और वो ट्रैफिक अलाउ किया गया है, वहां से ट्रैफिक कश्मीर की तरफ आना शुरू हो गया है, और ये वहां पर जो लोग आना चाहते हैं उन्हें मतलब सुबह 7 बजे से 12 बजे तक नगरोटा क्रॉस करना होता है, इसी तरह उन्हें 8 बजे से 1 बजे तक उधमपुर क्रॉस करना होता है। तो जो कश्मीर से ट्रैफिक छोड़ा जाएगा उसके लिए 11:30 बजे का रखा गया है कि काजीगुंड से जम्मू की तरफ जो मुसाफिर गाड़ियां होती है उन्हें 11:30 बजे बाद चलने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन जब यात्रा में गाड़ियों का जो कानवाई कम होता है तो उस दिन इनको थोड़ा सा पहले ही रिलीज किया जाता है। तो वैसा ही आज भी उम्मीद है कि जैसे ही ये यात्रा का काफिला कश्मीर की तरफ रवाना किया जाएगा तो उसके बाद जो LMVs है वहां पर रुकी हुई होती हैं, सुबह से इंतजार करते होते हैं जो जम्मू जाना चाहते हैं, तो उन्हें बाद में रिलीज किया जाएगा जम्मू की तरफ।
1: जी
0: फिलहाल मौसम खुशगवार है, बादल है, और जो घटाएं छाई हुई है पूरे जो इसमें जो रामबन बानहाल सेक्टर में, जो दूर दूर तक अगर देखेंगे तो धुंध ही धुंध है। तो उम्मीद है कि हाईवे ठीक रहे, और जो बारिशों की भी पेशेंगोई की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से हल्के हल्के शावर्स का इम्कान है कुछ कुछ इलाकों में आज भी ऐसे कल भी। तो फिलहाल जो गाड़ियां चल रही हैं, ट्रैफिक चल रहा है, और उम्मीद है कि जो श्री अमरनाथ यात्रा के दोनों काफले जो मुकर्रा वक्त इनके लिए होता है और जो स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उनमें इन्हें बहफाजत अपनी मंजिलों की तरफ रवाना किया जाएगा।
1: जी हम भी ऐसी उम्मीद रखते हैं कि जो यात्रा अभी तक हुई जैसे जिस अंदाज़ से हुई और प्रशासन की निगरानी में हुई, और अब के बाद भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो भी यात्री आएंगे और यहाँ दर्शन करके वापस जाएंगे उनके आने और जाने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, मौसम की मौसम की कृपा हम पर बनी रहे, और साथ ही में जो नेशनल हाईवे पस्या गिराने या दीगर वजूहत से रोक दी जाती है, उसमें रुकावट पैदा होती है, उससे हमें छुटकारा मिल जाए। फिलहाल आपका इस तफसीली रिपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया सर।
1: हमारे साथ मोहम्मद तस्कीन जुड़े हुए थे बानिहाल से, हमारे जो संवाददाता हैं। अब हम सीधा रुख करेंगे श्रीनगर की जानिब, जहां पर हमारे संवाददाता इमरान नायकू मौजूद हैं। उनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप इस विशेष प्रसारण का हिस्सा बने रहिए।

0: जी श्रोताओ, हमारे साथ हमारी अनंतनाग के संवाददाता एस तारिक किस टाइम टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तारिक साहब, आपका खैर मकदम है आज के इस विशेष प्रसारण में। बताइए, क्या हैं आपके पास ताज़ा तरीन अपडेट्स यात्रा 2026 का आज 36वां दिन इसके हवाले से?
1: हाँ बिल्कुल इकबाल जी,

0: मौका मौसमी यात के अनुसार आज पहलगाम से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा तक यात्रा मार्ग में मौसम बादलों से घिरा हुआ और ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निरंतर तापमान लगभग 8 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 12 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने की संभावना है। पहलगाम आदर्श शिविरों और इसके आसपास के क्षेत्रों में दिन के समय कहीं कहीं धूप निकलने के साथ साथ आकाश आधा बादलों से घिरा रह सकता है। यहाँ अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान जो है 6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने के अनुमान है। चंद्रवारी शीशनागुर पंचतनी से लेकर श्री अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा तक ऊंचाई वाले मार्ग पर अधिकतर बादल जो छाए रहेंगे। इन क्षेत्रों में तापमान 7 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड बीच बने रहने की संभावना है। मौसमियात ने कहा है कि यात्रा मार्ग के ऊंचाई वाले भागों पर प्रतिकाल कहीं कहीं हल्की धुंध छाई रह सकती है, जबकि दिन के दौरान या शाम के समय हल्की बूंदाबांदी या छटपट वर्षा का 10 से 20% तक अनुमान है। तहम किसी भी बड़ी वर्षा या मौसमी तब्दीली की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान हवा की गति हल्की रहेगी, जिससे मौसम ठंडा और सुहाना महसूस होगा। तो आज भी पहलगाम मार्ग से श्री अमरनाथ जी यात्रा को फिलहाल स्थायी रूप से निलंबित रखा गया है। इधर जम्मू के भगवती नगर आदर्श शिविर से बालतल मार्ग के लिए 42 छोटी बड़ी वाहनों में 926 यात्रियों का जत्था घाटी की ओर प्रवेश करके 11 बजे के करीब लगभग काजीगुंड ट्रांजिट का पहुंचने वाला है। इस जत्थे में 693 पुरुष, 178 महिलाएं, 34 साधु और 21 साध्वी शामिल है। तो इस तरीके से 57 दिनों की यात्रा के आरंभ से अब तक 4,71,588 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन कर चुके हैं, जबकि गुजश्ता दिन 659 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। जी,
1: 4 लाख से जायद श्रद्धालु ने पवित्र गुफा में जाकर दर्शन किए, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। और इस बात से अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि जो प्रशासन पूरी तरह से तैयार था और सब लोग इस यात्रा को कामयाब बनाने में अपना अपना योगदान देने की भरपूर कोशिश करते थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसीली रिपोर्ट के लिए, आपसे आगे बात होती रहेगी। हमारे साथ हमारे अनंतनाग के संवाददाता एस तारिक बात कर रहे थे। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। इस प्रसारण का हिस्सा बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।

0: निश्रित गायत्री छंदः गणपतिर्देवता।
1: श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण जारी है। फिलहाल हम समाचार सुनने के लिए आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र चलते हैं। सुबह के 8 बजे आप समाचार सुनेंगे और समाचारों के तुरंत बाद हम आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे।

0: मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1-4-4-1-6 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे

0: संदेह या सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
2: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोप्रेक, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
3: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर MDR वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। UPI लेनदेन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
4: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। Ports, industry, maritime expert together on one platform.
1: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई।

0: है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी NDA विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनके शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्र और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्प कला, कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
3: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
4: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन

0: को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कर गोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: सेंटर नोटिफाइज एक्ट पेविंग वे फॉर रिजर्वेशन फॉर एसटी कम्युनिटी इन गोवा असेंबली। लोकसभा पासेस बिल टू ऑथराइज गवर्नमेंट टू परमिट बैंक्स टू लेवी चार्जेस ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस। Prime Minister Narendra Modi calls upon people to celebrate National Handloom Day today, showcasing India's rich and diverse handloom heritage and promote handloom products. प्रोटेस्टिंग झारखंड स्टूडेंट।

0: बारे नामा निगार से।
1: भारतीय गजट में शाये करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 अगस्त 2026 से ये कानून नाफिज होगा, जिससे रियासत की कबायली बिरादरियों की देरीना मांग पूरी होगी और हल्के की असर नौ तरतीब और रिजर्वेशन के अमल को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए गोवा के वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इसे पूरा किया गया वादा करार दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ये एक्ट दर्ज फहरिस्त कबायल बिरादरियों के लिए देरी इंसाफ और सियासी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने की जानिब एक फैसला कुन कदम है। डॉक्टर सावंत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का इस कानून को हकीकत बनाने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे सबका साथ सबका विकास की अक्कासी होती है। पणजी से महेश चौबड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: लोकसभा ने अदायगी और तस्फिया निज़ाम से मुतालिक एक्ट 2007 में तरमीम के लिए एक बिल को मंजूरी दी है। इस तरमीम के तहत हुकूमत को बैंकों और दीगर अदायगी खिदमात फराहम करने वाले इदारों को यूपीआई और दीगर नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के जराए पर फीस या सर्विस चार्ज वसूल करने की इजाज़त देने का अख्तियार दिया गया है। हुकूमत के इस इकदाम का मकसद सारिफीन और छोटे कारोबार पर मामूली सर्विस चार्ज आयद करते हुए बैंकों, अदायगी फराहम करने वाले इदारों और डिजिटल अदायगी के बुनियादी ढांचे से वाबस्ता इदारों के लिए पायदार आमदनी का एक निज़ाम कायम करना है, ताकि डिजिटल अदायगी के निज़ाम को मजबूत किया जा सके। लोकसभा से मंजूर होने वाले इस तरमीमी बिल का मकसद मौजूदा कानूनी शक को ख़त्म करना है, जो बैंकों और अदायगी के खिदमात फराहम करने वाले इदारों को यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के जराए पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR वसूल करने से रोकती है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में वाकई मरबूत आजमाइशी मरकज से दरमियानी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिजाइल Agni-4 का कामयाब तजुर्बा किया। वजारत दिफा ने कहा है कि इस आजमाइशी परवाज में मिसाइल के तमाम कामकाज और तकनीकी पैमाने दुरुस्त साबित हुए। यह आजमाइश स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमान ने अंजाम दी है। वजारत ने मजीद कहा है कि यह कामयाब परवाज मुल्क की जामे दिफाई सलाहियतों को मुस्तहकम करने में एक और अहम संग मील है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाब मिशन के लिए स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमान और DRDO को मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर दिफा ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्क का दिफा करने के अज़्म का इआदा किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर शहरी पर जोर दिया है कि वो आज हथकरघा का कौमी दिन जोशोखरोश और खुशी के साथ मनाए। एक वीडियो पैगाम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत की जद्दोजहद आज़ादी के एक हिस्से के तौर पर स्वदेशी तहरीक का आगाज किया गया था और जिंदगी के हर शोबे से वाबस्ता लोगों ने मुत्तहिद होकर बरतानवी राज के खिलाफ तारीखी जद्दोजहद की थी। उन्होंने लोगों की हौसला अफजाई की कि वो उन गरीब बुनकर कुनपों और फनकारों की मदद करें जो अपने हाथों से कपड़ा तैयार करते हैं।
2: मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे हो। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें।
0: हथकरघा का कौमी दिन 1905 में इसी दिन स्वदेशी तहरीक के आगाज के याद में हर बरस 7 अगस्त को मनाया जाता है। टेक्सटाइल की वजारत आज हथकरघा का 12वां कौमी दिन मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में कौमी तकरीब का इनेकाद करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इसमें मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी, जबकि टेक्सटाइल्स के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और वजीर ममलुकत पवित्रा मार्गरेटा भी इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। टेक्सटाइल की वजारत ने कहा है कि इस तकरीब का मकसद भारत की मालामाल हथकरघा विरासत का जश्न मनाना है और मुल्क की सकाफती और इक्तसादी तरक्की में हथकरघा बुनकर बिरादरी के तआवुन को तस्लीम करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: तकरीबात की एक अहम खसूसियत साल 2025 के लिए संत कबीर हैंडलूम अवार्ड की पेशकश होगी। भारत की हैंडलूम रिवायत के तहफ्फुज में उनकी कारकर्दगी, जिद्दत, तराजी और ताउन के एतराफ़ में बुनकरों को कुल 22 अवार्ड दिए जाएंगे, जिनमें 3 संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स और 19 नेशनल हैंडलूम अवार्ड शामिल हैं। इस मौके पर मुल्क की मालामाल और मुतनवे हैंडलूम बुनाई की रिवायात का जश्न मनाने के लिए 4 यादगारी डाक टिकट जारी किए जाएंगे। तकरीब के दौरान 2 मतबूआत अर्थ रूट थ्रेड ऑल डाइड हैंडलूम टेक्सटाइल्स ऑफ सेंट्रल

0: इंडिया और हैंडलूम अवार्ड्स बुक 2025 का भी इजरा अमल में आएगा। अवार्ड याफ्ता हैंडलूम मसनूआत के अलावा शायकीन को रिवायती कनी बुनाई और वॉल हैंकिंग बुनाई के लाइव मुजाहरे देखने का भी मौका मिलेगा, जिससे भारत की हैंडलूम रिवायात के तनव्व और बेहतरीन कारीगरी की एक झलक देखने को मिलेगी। 1905 में इसी दिन शुरू की गई स्वदेशी तहरीक की याद में हर साल 7 अगस्त को कौमी हैंडलूम डे मनाया जाता है। टेक्सटाइल की वजारत के मुताबिक 2015 में अपने आगाज के बाद से ये दिन मुल्क के हैंडलूम बुनकरों के फन, महारत और लगन का जश्न मनाने का एक खास मौका फराहम करता है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। झारखंड में एहतजाज कर रहे तलबा ने मामले को हल करने की खातिर रियासती हुकूमत के साथ बातचीत के लिए एक 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों में एहतजाज अहम मरहले में दाखिल हो गया है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती इम्तिहानात में मुबीना बेजब्तगियों के खिलाफ एहतजाज का आज 14वां दिन है, जबकि 6 तलबा अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। कल शाम उम्मीदवारों ने रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एक फ्लैशलाइट एहतजाजी मार्च किया। बाद में रांची सदर के एसडीएम रजत कुमार और एडीएम धनंजय कुमार ने एहतजाज कर रहे तलबा से मुलाकात की। नामा निगारों से बात करते हुए एसडीएम रजत कुमार ने कहा कि इंतजामिया अपने नौजवानों से बात करने आई है ताकि मुस्तकबिल की उनकी तैयारियों में मदद पर बातचीत हो सके। तलबा लीडरों ने कहा कल शाम तक रियासती हुकूमत की जानिब से बातचीत के लिए बाजाब्ता तौर पर मधु नहीं किया गया था, ताहम वजीर आला हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद की बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। तलबा ने एक 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम।
1: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली कर्नाटक, मशरकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम और माहे, ओडिशा और जनूबी अंदरूनी कर्नाटक के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज शुमाल मशरक के हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार जजायर, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। इस साल आसाम में सैलाब के सबब मजमूई हलाकतों की तादाद बढ़कर 97 हो गई है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के 15 अजला में 1,68,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। 480 से ज्यादा गांव सैलाब से मुतासर हैं, जबकि हजारों अफराद इमदादी कैंपों में रह रहे हैं और इमदाद तकसीम करने वाले मराकज से मदद हासिल कर रहे हैं। सैलाब के बाद कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत ने सेहत की देखभाल से मुतालिक कैंप लगाने में तेजी पैदा कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 एग्जीक्यूटिव अहकाम पर दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को महदूद करना और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना है। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए इसे एक अफसोसनाक फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया अमरीका के इमिग्रेशन निजाम की मुबैना गलत इस्तेमाल के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक पहले एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे में ऐसे गैर मुल्की शहरियों के बच्चों की मुख्तलिफ अकसाम की निशानदेही की गई है जो सुप्रीम कोर्ट की तस्लीमशुदा इस्तिस्नाई सूरतों के तहत पैदाइश की बुनियाद पर अमरीका की शहरियत के अहल नहीं होंगे। दूसरे एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे में महकमा खारजा और दाखिली सलामती के महकमे को हिदायत दी गई है कि वो बर्थ टूरिज्म का खात्मा करे। बर्थ टूरिज्म का मतलब वो अमल है जिसमें गैर मुल्की शहरी अपने बच्चों को अमरीकी शहरियत दिलवाने के मकसद से अमरीका का सफर करते हैं। मगरबी बंगाल सरकार पहली मरतबा मरकजी हुकूमत की हर घर तिरंगा मुहिम में बाजाब्ता तौर पर शिरकत करने के लिए तैयार है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल यौम आज़ादी की तकरीबात से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का ऐलान किया, जिनमें रियासत भर में 70,00,000 कौमी परचम तकसीम करने का मंसूबा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर घर तिरंगा मुहिम में मुल्क मुकद्दम और हुब्बुलवतनी के नजरिए को बुनियाद बनाकर शामिल हो रही है। भारत और सिंगापुर ने जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी के रोडमैप के तहत तय किए गए 8 शोबों में दोतरफा ताउन की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत और सिंगापुर की वजारत खारजा सतह की मुशावरत का 19वां दौर कल नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ। इस मीटिंग की मुश्तरक सदारत वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन और सिंगापुर की वजारत खारजा में पॉलिसी के मुस्तकिल सेक्रेटरी

पर्सन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर SMS या आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। श्रीनगर के लिए टोल फ्री नंबर है 1800 1807199, और इसी तरह का एक और नंबर जम्मू के लिए भी मौजूद है, वो है 1800 1807198। इन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके आप प्रशासन से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम हमारे ज़रिए कोई बात दूसरों तक पहुंचे तो हमारे स्टूडियोज़ के नंबर पर हमें व्हाट्सएप या SMS के ज़रिए अपनी बात हम तक पहुंचाइए। हमारा स्टूडियोज़ का हेल्पलाइन नंबर है 9596990954, और ये विशेष प्रसारण जारी है, और हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हम आगे कोशिश करेंगे कि जो हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू हैं उनसे बात करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि श्रीनगर में इस वक्त यात्रा के हवाले से क्या कुछ इंतजाम हैं, क्या कुछ हो रहा है, प्रशासन किस तरह से तैयारी कर रही है या तैयारियों में किसी किस्म की कोई कमी तो नहीं आई है, और यात्रियों का फीडबैक भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप हमारे ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए भक्ति संगीत।

0: जी श्रोताओं, आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। और जैसा कि हमने इस भजन से पहले आपसे कहा था कि हम अपने श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू जी से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज यात्रा के 36वें दिन कैसा माहौल है और क्या कुछ उनके पास ताज़ा रिपोर्ट्स हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू जी। इमरान, खैर मकदम है, आपका स्वागत है आपका इस विशेष प्रसारण में। और बताइए हमें, आज यात्रा का 36वां दिन है और 36वें दिन से मुतालिक और कल तक जो यात्रा हुई उसके मुतालिक आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं और हमारे श्रोताओं तक ताज़ा तरीन जानकारी पहुँचाइए।
1: बिल्कुल, देखिए 35 दिन अमरनाथ जी यात्रा के मुकम्मल हुए हैं, आज 36वां दिन है। और जिस तरीके से हमने देखा कि तकरीबन 5 लाख अमरनाथ जी यात्रियों ने अभी तक पवित्र गुफा का दर्शन किया है, और जल जो कल ऑफिशियल जो है अपडेट भी आया है कि अभी तक 2022 से 2024 तक 22 लाख से ज्यादा अमरनाथ जी यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया है। ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है इस यात्रा को लेके, और खासकर इस साल डिस्पाइट के यहाँ मौसम की खराबी की वजह से जो पहलगाम का रूट खराब हुआ और उसके बाद जो यात्रा डिसरप्ट हुई, लेकिन उस सब के बावजूद भी इस साल भी अभी तक यात्रा जो है वो जारी है पुरअमन तरीके से, पीसफुल तरीके से, और यात्रियों में वो उत्साह, वो यात्रियों में वो जोश और जज्बा मुसलसल जारी है। और आज भी हम देख रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्री इस कश्मीर पहुंच रहे हैं और यहाँ से इन्हें अमरनाथ जी के पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जा रहा है। जहां तक श्रीनगर के पंथ जो ट्रांजिट कैंप का ताल्लुक है, आज सुबह यहाँ से अमरनाथ जी यात्रियों का एक काफिला जो है वो रवाना किया गया, और इस पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया। और इस अमरनाथ जी यात्रा के जत्थे में 150 से ज्यादा अमरनाथ जी यात्री थे, जिनमें मेल फीमेल साधु साध्वी शामिल थी, कुछ बच्चे भी थे, और हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के बीच में इन यात्रियों को रवाना किया गया है। और कल शाम को भी यहाँ यात्रियों का जत्था पहुंचा था और जिन्होंने यहाँ नाइट स्टे किया। इसके अलावा परसों से भी कुछ यात्री यहाँ ट्रांजिट कैंप में मौजूद थे, और अभी भी ये बहुत सारे यात्री यहाँ ट्रांजिट कैंप में मौजूद है जिन्हें अमरनाथ जी यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यात्रा बड़ी पीसफुल तरीके से जारी है, और यहाँ जो यात्री श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप में रुके हैं इनके लिए, जैसे कि पहले दिन से बता रहे हैं कि उनके लिए सभी तरह की जो है प्रशासन की तरफ से खिदमात या जो अरेंजमेंट से इंतजाम है वो रखे गए, और किसी भी यात्री की कोई ऐसी शिकायत अभी तक सामने नहीं आई है कि अरेंजमेंट्स को लेके या बाकी चीजों को लेके। और साथ ही मौसम का भी अगर देखें तो आज हालांकि इस वक्त हल्के से बादल छाए हुए हैं, लेकिन जो मौसम विभाग या प्रशासन है उन्हें कहा है कि मौसम अब बेहतर ही रहेगा, खासकर कश्मीर वैली में, और हल्की हल्के से बादल छाए हुए, लेकिन ओवरऑल आज भी मौसम सुहाना है। और इस सुहाने मौसम के बीच में अमरनाथ जी यात्रियों को आज भी जो है पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया है।
0: जी, जैसा कि आपने बताया कि इस साल 5 लाख से जायद जो श्रद्धालु हैं उन्होंने उन्होंने दर्शन किए, और 2021 से 2026 तक लगभग 21 लाख या

0: कपड़ा पहुंच चुका है। उसे ये प्रतीत होता है कि घाटी का जो वातावरण है वो अनुकूल है इस यात्रा के लिए, और घाटी के लोग हमेशा दिल से इन यात्रियों के, मेहमानों के स्वागत के लिए हमेशा तैयार होते हैं, और इनकी खिदमत में हम किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने देते, और ये बहुत ही खुशायंत बात है। और हमें ये बताइए कि जो यात्री यहाँ से यात्रा करके जाते हैं और ट्रांजिट कैंप में जब रुकते हैं, पांथा चौक के ट्रांजिट कैंप में, आपकी उनके साथ बात होती है और वो क्या, उनका क्या अनुभव रहता है, वो अपना अनुभव कैसे शेयर करते हैं आपके साथ कि हमारे साथ जो घाटी के लोग हैं उनका कैसा व्यवहार रहा है, या वो यहाँ ख़रीदारी करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की, तो कैसा अनुभव वो शेयर करते हैं आपके साथ?
1: देखिए, दो तरह के, जैसे मैंने कल परसों भी कहा था कि दो तीन तरह की कैटेगरीज हमने अपने यात्रियों की बनाई है जिनसे हमारी बात रहती है। वो यात्री जो पहली मर्तबा कश्मीर आ रहे हैं अमरनाथ जी गुफा के दर्शन के लिए, दूसरे वो यात्री जो कई सालों से यहाँ पे आ रहे हैं, और तीसरी वो कैटेगरी है जो पवित्र गुफा का दर्शन करके आए और उनसे हमारी बात हो रही है, और जो अभी दर्शन नहीं किए हैं। जनरली जब हमने सबसे बात की, हम बात कर रहे हैं, तो सबका यहाँ का एक यूनिक एक्सपीरियंस है। खासकर जो घाटी के लोगों का जो व्यवहार है, यहाँ जो लोग यात्रियों से मिल रहे हैं, यात्रियों का मानना है कि जिस भी स्टॉल पे वो जाते हैं, जिस भी वेंडर से वो मिलते हैं, जिस भी पुणे वाले से वो मिलते हैं, किसी ड्राइवर से जो गाड़ी चलाते हैं उनसे मिलते हैं,
0: जी
1: सर्विस प्रोवाइडर से, वॉलंटियर से मिलते हैं, या आम किसी शहरी से मिलते हैं, तो उन्हें ये महसूस कभी नहीं होता है कि वो अपनी मतलब स्टेट से या यूटी से किसी दूसरे स्टेट और दूसरी घाटी में पहुंचे हैं। और खासकर जो जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की जो मेहमान नवाजी है वो बहुत ही, उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग है। और कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि यात्री, अगर आपने भी सुना होगा, जो यात्री बात करते हैं जब उनकी हम बाइक्स चलाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो अक्सर यहाँ के लोगों के ज्यादा तारीफें करते हैं,
0: जी
1: यहाँ के
0: बिल्कुल
1: प्रशासन की ज्यादा तारीफ करते हैं,
0: बिल्कुल
1: प्रशासन से ज्यादा लोगों की तारीफें करते हैं कि यहाँ के लोगों का कितना अच्छा व्यवहार है। और इवन हमने देखा है जहाँ कहीं यात्रियों को किसी तरह की कोई मुश्किल हुई, तो आपने वीडियोस भी देखा होगा कि यहाँ के लोकल्स ने वॉलंटियरली उन्हें कंधे पे उठा के दूसरी जगह तक
0: बिल्कुल
1: लिया। तो यही एक इस खास अलामत है इस अमरनाथ जी यात्री की यात्रा की, इसकी खसूसियत और खासियत। और यही सबसे अच्छा पैगाम है कि जो कम्युनल हारमोनी की भी एक मैसेज इस यात्रा के जरिए से जाती है, कल्चरल इंटीग्रेशन की मैसेज यहाँ से जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि वो एक दूसरे का कल्चर जानने का मौका सिर्फ मुझे लगता है इस यात्रा से ही मिलता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग कोनों से जो लोग आते हैं वो न सिर्फ यात्रा को लेके खुशी का इजहार करते हैं कि उन्हें गुफा का दर्शन करने का मौका मिला है, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट वो इस यात्रा को लेके ये भी कहते हैं कि जो उनके साथ यहाँ के लोकल्स ने व्यवहार किया है, जो इनके साथ लोकल्स का जो कल्चरल एक्सचेंज रहा है
0: बिल्कुल
1: या बातें हुई है, वो सबसे उनके लिए लाइफ का शायद बेस्ट एक्सपीरियंस है।
0: जी, इससे हमें भी ये सीख मिलती है और हमें भी एक्सपीरियंस मिलता है कि बाहर के लोगों का कल्चर कैसा है और बाहर के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम उनके लिए क्या हमें उनके लिए क्या करना चाहिए। और इससे ये भी हमें सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे के मज़हबों की इज़्ज़त करनी चाहिए, एक दूसरे की आइडियोलॉजीज़, जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ हैं, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, तभी जाकर हमारी मज़हबी आइडियोलॉजी और हमारी कोई इज़्ज़त करेगा। और आपका इस तफसीली रिपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनकर बहुत खुशी हुई और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू अपने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर कर रहे थे, और जो यात्रियों के एक्सपीरियंस है उसके बारे में इन्होंने बताया, मौसम के हवाले से इन्होंने जानकारी दी, और इस जानकारी में इन्होंने ये बताया कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये प्रिडिक्ट किया है कि अब जो घाटी में मौसम है वो धीरे धीरे बहाल होगा, ठीक होगा, और अब लंबे समय तक धूप रहेगी, और हमारी यही मनोकामना है, यही दुआ है ऊपर वाले से कि पिछले कई दिनों से जो खराब मौसम का हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसमें जल्द से सुधार आए, क्योंकि मौसम की खराबी से कई सारे क्षेत्र हमारे जीवन के प्रभावित होते हैं जो हम नहीं चाहते, क्योंकि आपने देखा होगा कि यात्रा भी कई बार सस्पेंड करनी पड़ी, और जो आने जाने में, चलने फिरने में राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों को तकलीफ़ें होती हैं,

बहुत सारी चीज़ें जो मौसम की ख़राबी की वजह से पैदा होती हैं, क्योंकि हमारी घाटी जो है ये मौसम की तब्दीली के साथ अपना पूरा रुख ही बदल देती है। चाहे कितनी ही भीषण गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो यहाँ का पूरा वातावरण ही तब्दील हो जाता है। तो हमारी कुल मिलाकर यही दुआ रहेगी ऊपर वाले से कि मौसम में जल्द से सुधार हो और हम अपना जो कामकाज है वो अच्छे से कर पाएँ, यात्रियों की अच्छे से देखभाल कर पाएँ और अपना जीवन अच्छे से व्यापन कर पाएँ। और साथ ही हमारे पास इस वक्त दिन के 8 बजे तक का दर्शन रिपोर्ट आया है, जिसके मुताबिक आज दिन के 8 बजे तक कुल मिलाकर 673 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं, जिनमें 353 पुरुष, 255 महिलाएं, 5 बच्चे, 7 साधु और 53 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा हम तक दिन के 8 बजे तक आया है, सुबह के 8 बजे तक का, और इसके मुताबिक 673 यात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण जारी है और अब हम रुख करने की कोशिश करेंगे अपने गांधरबल के संवाददाता रहीम रिजवान की जानिब। जब तक हमारा उनके साथ राबिता होता है, आप ये भजन सुनिए।

वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का सिलसिला जारी है और जारी है हमारा अब तक अपडेट्स पहुंचाने का सिलसिला। और इस ट्रांसमिशन में हम अपडेट्स पहुंचाने के साथ साथ चंद और चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। और एक सिलसिला मैंने दो दिन पहले शुरू किया था जिसमें मैं आपको बता रहा था कि श्रावण मास में हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले चंद त्योहारों के बारे में, और उसमें हमने कई एक चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कि हमने नागपंचमी के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी थी, जानकारी दी थी, कांवड़ यात्रा के बारे में हमने आपको बताया था, और जो श्रावण का महीना होता है उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की। और इसी महीने में एक और त्यौहार मनाया जाता है जिसे हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। रक्षाबंधन, जैसा कि हम सबको मालूम है, भाई बहन की मोहब्बत और प्यार का एक पर्व है, त्यौहार है, और भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में रक्षाबंधन एक निहायत ही खूबसूरत और पवित्र पर्व माना जाता है। ये त्यौहार भाई और बहन के बीच प्रेम, विश्वास, स्नेह और एक दूसरे की रक्षा की संकल्प की याद दिलाता है। आमतौर पर ये पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे रखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रखी या रक्षा सूत्र बांधती है और इसकी लंबी उम्र, अच्छी सेहत, सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। भाई बहन अपने भाई भी अपनी बहन की रक्षा, खुशी और इज्जत का संकल्प लेता है और उसे तहफ्फुज और तोहफा देता है। इसी तरह रखी का ये छोटा सा धागा एक गहरे रिश्ते, प्रेम और विश्वास की निशानी बन जाता है। रक्षाबंधन पर हम और भी बात करेंगे, फिलहाल ये भजन सुनिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन .com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।

जी श्रोताओं, हमारे पास ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट आया है जिसके मुताबिक दिन के 9 बजे तक कुल मिलाकर 1509 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। इनमें 836 पुरुष, 565 महिलाएं, 10 बच्चे, 9 साधु, 1 साध्वी और 88 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। जी हाँ, दिन के 9 बजे तक 1509 श्रद्धालु ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए हुए हैं।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। आज यात्रा का 36वां दिन है और आज दिन के 9 बजे तक कुल मिलाकर 1509 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए, जिनमें से 836 पुरुष, 565 महिलाएं, 10 बच्चे, 9 साधु, 1 साध्वी और 88 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे जो श्रावण मास होता है, श्रावण का महीना होता है, इसमें मनाए जाने वाली एक अहम जो पर्व है रक्षाबंधन, उसकी तो रक्षाबंधन के साथ कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। एक मशहूर कथा के मुताबिक जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर चोट लगी थी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। कहा जाता है कि कृष्ण ने इसे स्नेह और श्रद्धा समझकर याद रखा और बाद में द्रौपदी की रक्षा का संकल्प निभाया। इसी कथा को भाई बहन के बीच प्रेम और रक्षा के भाव से जोड़कर देखा जाता है। रक्षाबंधन से मुतलिक एक और मशहूर कथा राजा बाली और माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी ने राजा बाली की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें अपना भाई माना। राजा बाली ने भी इन्हें बहन के रूप में कबूल किया। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि रक्षाबंधन सिर्फ खूनी रिश्तों तक महदूद नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और विश्वास से बनने वाले रिश्तों को भी मजबूत करता है, जो हमें अपने आम जीवन में भी याद रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक दूसरे को भाई बहनों की नज़रों से, छोटे बड़े का एहसास अपने दिल में लिए हुए, अपनी आँखों में अपने बड़ों की इज्जत और छोटों के साथ मोहब्बत से पेश आएंगे तो हमारा जीवन सफल होने के बहुत चांस बनते हैं। तो इस बारे में हम और भी बात करेंगे। फिलहाल हम ये भजन सुनते हैं और आपको भी सुनवाते हैं। और ये विशेष प्रसारण जो श्री अमरनाथ जी यात्रा का चल रहा है, इसके साथ आप जुड़े रहिए और एंजॉय करते रहिए भक्ति संगीत।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
2: जी श्रोताओं, हम बात कर रहे थे रक्षाबंधन से मुतल्लिक। रक्षाबंधन के अलग अलग जो मान्यताएं हैं वो हमने आप तक पहुंचाई, और भारत के अलग अलग हिस्सों में रक्षाबंधन मनाने की परंपरा भी मुख्तलिफ है। कहीं बहनें भाई की आरती उतारती हैं, माथे पर तिलक लगाती हैं और रखी बांधती हैं, तो कहीं परिवार के सभी लोग मिलकर पूजा पाठ और भोजन का आयोजन करते हैं। कई स्थानों पर इस दिन दान, सेवा और धार्मिक आयोजन भी किया जाता है। रक्षाबंधन का महत्व सिर्फ भाई और बहन के रिश्ते तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पर्व हमें परिवार में प्रेम, सम्मान, जिम्मेदारी और आपस में विश्वास की महत्वता समझाता है। आज के बदले हुए दौर में जब लोग अपनी मसरूफ जिंदगी में एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे त्यौहार परिवार को एक साथ लाने का एक खूबसूरत महत्व प्रदान करते हैं। और हमने देखा है कि मॉडर्निटी की वजह से या जो भी हमारे पास गैजेट्स

होते हैं घर में, हम आम तौर पर अपना समय उन्हीं के साथ बिताना पसंद करते हैं, या अलग अपने कमरे में, या अलग अपने ही माहौल में, अलग अपने ही अंदाज में अपना जीवन व्यापन करना चाहते हैं, जो एक अच्छी बात नहीं है। हमारी फैमिली है, हमारे बहन भाई हैं, हमारे दोस्त रिश्तेदार हैं, हमें उन सब का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो भी हमारा ख्याल रख सकें। हमें उनके साथ घुलना मिलना चाहिए, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करनी चाहिए, अपना समय उनके साथ बिताना चाहिए, अपना समय व्यापन करना चाहिए उनके साथ, ताकि हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे अंदर जो एक्सप्रेशंस हैं, वो हम उनके सामने रख पाएँ, उनके साथ बात कर पाएँ, जिससे हमारे दिलों पर जो बोझ होता है वो कम हो जाए। अगर हमारे दिल में कोई परेशानी है, किसी किस्म का कोई सवाल है, कोई कठिनाई है, तो हम अपने बड़े बुज़ुर्गों से पूछ सकते हैं, अपने साथियों से पूछ सकते हैं, और वो हमारी इसमें काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। रक्षाबंधन पर और भी बात होगी, इसके महत्व पर और भी बात होगी, और ये प्रसारण भी आप सुनते रहेंगे, आगे आपके पास अपडेट्स भी आएंगी। फ़िलहाल ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए और हमारा साथ देते रहिए।

श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहें। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल पर, डीटीएच तथा हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। 2021 से 2026 तक कुल मिलाकर 21 लाख से ज़ायद श्रद्धालुओं ने यहाँ घाटी

में आकर पवित्र गुफा जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए और इस साल लगभग 5 लाख के करीब, या यूं कहें कि 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आए और उन्होंने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए, जो ये दर्शाता है कि लोगों में कितना उत्साह रहता है, लोगों में कितनी भावनाएं होती हैं कि वो यहाँ आए, पवित्र गुफा में जाएं और बाबा बर्फानी के दर्शन करें। और हम बात कर रहे थे रक्षाबंधन से मुतालिक, और इसमें हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि आज रक्षाबंधन को की जो परंपरा है वो बदल रही है। अब बहनें सिर्फ भाई ही को नहीं राखी बांधती हैं, बल्कि कई जगह बहनें एक दूसरे को भी राखी बांधती हैं। समाज में कई लोग पर्यावरण, फौजी जवानों, पुलिस अहलकारों और समाज सेवा से जुड़े लोगों को भी राखी बांध कर उनकी सेवा और समर्पण के लिए आभार व्यक्त करती हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हैं। रक्षाबंधन का असल संदेश यही है कि रक्षा सिर्फ एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक दूसरे के सम्मान, सहयोग और खुशी की जिम्मेदारी है। राखी का ये नन्हा सा धागा हमें याद दिलाता है कि मजबूत रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और सम्मान से बनते हैं। इसीलिए रक्षाबंधन महज एक त्यौहार नहीं, बल्कि परिवार, प्रेम, स्नेह, विश्वास और इंसानी रिश्तों की खूबसूरती का अस्तित्व है। ये दिन हमें अपने प्यारों के करीब लाता है और शिकवे भुलाने और रिश्तों को मजीद मजबूत बनाने का संदेश भी देता है। आइए इस साल रक्षाबंधन पर सिर्फ राखी नहीं, बल्कि एक दूसरे की सम्मान, खुशी और रक्षा का संकल्प भी लें। श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण जारी है, हमारा साथ ऐसे ही देते रहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।
2: जी हाँ, जैसे कि आप मुख्तलिफ संदेशों में ये सुनते हैं कि जब आप यात्रा कर रहे हो तो अपने साथ एक आईडी ज़रूर रखें जिस पे आपका नाम हो, पता हो, आपका टेलीफोन नंबर हो, घर के किसी अन्य सदस्य का नंबर हो या आपके साथ जो यात्रा कर रहे हैं उनमें से किसी का नंबर हो, क्योंकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपके और उनके घर वालों को सूचित कराया जाए और उन्हें आपके बारे में समाचार दिया जाए। और साथ में ही हम बार बार आपसे ये अपील करते रहते हैं, ये गुजारिश करते रहते हैं कि इस यात्रा मार्ग को साथ

साफ रखने की कोशिश कीजिए, इस पर सफाई रखने की कोशिश कीजिए। जगह जगह इस रास्ते पर डस्टबिन्स लगे हुए हैं, आपके पास अगर कोई वेस्ट है, चाहे वो सूखा कचरा हो गीला कचरा हो, उसे अलग अलग डस्टबिन्स में डालिए। और यहाँ के जो पर्यावरण है वहाँ का, उसके साफ रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक पवित्र रास्ता है, एक पवित्र पर्यावरण है, जिसे साफ रखना आपका फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ है। और उसके बाद जो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट है, इसको अपने अपने तरीके से वहाँ से हटाया जाता है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, और इसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है बहुत ही एक अच्छे ढंग से। लेकिन ज़िम्मेदारी आपकी ये है कि खाली बोतलें या कोई भी रैपर्स होते हैं, बिस्किट्स के, चिप्स के, या बाकी जो भी आपके पास होता है, उसे कृपया करके सड़कों पर ना फेंका करें। जैसा कि बहुत बार हमें शिकायत भी मिली कि खाली बोतलें वहाँ पे फेंकी जाती हैं, जिनसे फिर पैर फिसलने का बहुत खतरा रहता है, क्योंकि यह रास्ता पथरीला है, और पथरीले रास्ते पर अगर आप एक प्लास्टिक की बोतल फेंकेंगे तो उस पर से पैर फिसलने का अंदेशा रहता है, और आपको खुदा ना खास्ता आपके गिर जाने का खतरा रहता है, और आपको चोट भी लग सकती है, आपको चोट लगने का भी खतरा रहता है। और आगे भी हम बात करेंगे, हमारे पास अभी दर्शन रिपोर्ट जो आखिरी आया था उसके मुताबिक 1509 यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए थे। और ताज़ा तरीन जो दर्शन रिपोर्ट हमारे पास आएगा, हम आपको जल्दी उससे भी अवगत कराएंगे। फ़िलहाल हमारा ये विशेष रिपोर्ट सुनते रहिए, विशेष प्रसारण सुनते रहिए, हम जल्द लौटेंगे और आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन से अवगत कराएंगे।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: जी श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण, और इस प्रसारण में हम आपको लगातार दर्शन अपडेट देते रहते हैं कि अभी तक कितने श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में जाकर दर्शन किए हैं शिवलिंगम के। और इसी सिलसिले में हमारे पास जो ताज़ा अपडेट आया है दिन के 10 बजे का, उसके मुताबिक 2487 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं, जिनमें 1388 पुरुष, 938 महिलाएं, 12 बच्चे, 18 साधु और एक साध्वी के साथ साथ 130 सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। जी हाँ, 2487 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं दिन के 10 बजे तक। और हम इससे पहले बात कर रहे थे कि श्रावण मास में जो मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं जो हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं, और उन्हीं त्यौहारों में एक और त्यौहार होता है श्रावण पूर्णिमा। जी हाँ, हिंदू धर्म में श्रावण मास को भगवान शिव की भक्ति और आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी श्रावण मास के आखिरी दिन आने वाली पूर्णिमा को श्रावण पूर्णिमा कहा जाता है। ये दिन धार्मिक आस्था, पूजा पाठ, दान स्नेम और मुख्तलिफ सांस्कृतिक परंपराओं के लिए खास महत्व रखता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे स्नान करके साफ कपड़े पहनने और भगवान की पूजा करने की परंपरा है। बहुत से श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं और मंदिर जाकर पूजा पाठ करते हैं। भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, फूल और दीगर पूजा सामग्री अर्पित की जाती है। मान्यता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा और प्रार्थना से भगवान का आशीर्वाद हासिल होता है।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
2: जी हाँ श्रोताओं, जैसा कि आपने अभी इस संदेश में भी सुना कि जो श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाला मार्ग है, चाहे वो बालतल मार्ग हो या पहलगाम मार्ग हो, ये एक पहाड़ी रास्ता है और यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं है। मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है और अक्सर इस इलाके में मौसम ठंडा ही रहता है। और अगर आप बिना तैयारी के अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। आपको चाहिए कि आप अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें, एक अच्छा जूता पहने जो एंटी स्लिपरी सोल वाला हो, जिससे आपके फिसलने का खतरा कम हो, ताकि आप खुद भी महफूज रहें और आपके जो साथी हैं वो भी परेशानी से मुक्त रहें। आप एक जैकेट अपने साथ रख सकते हैं, हल्का सा एक स्वेटर, टोपी, मफलर या ग्लव्स अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का तापमान जो है बहुत जल्दी गिर जाता है और आपको फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम बात कर रहे थे श्रावण पूर्णिमा से मुतालिक। तो श्रावण पूर्णिमा की एक ख़ास बात यह है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में इस दिन को मुख्तलिफ नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। कई इलाकों में इस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जहां बहन अपने भाई की कलाई पर राखी

राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र, सेहत और सुख समृद्धि की कामना करती है। कई मकामात पर श्रावण पूर्णिमा को नारेली पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। ख़ास तौर पर साहिली इलाकों में समंदर और जल देवताओं की पूजा की जाती है और नारियल अर्पित किए जाते हैं और ये वहाँ की परंपरा है। जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उस समाज के लोग ये दिन ख़ास तौर पर बहुत ही एकता और अखंडता के साथ मनाते हैं, क्योंकि वो नए माही जो मछली पकड़ने का सीज़न होता है, मौसम होता है, उसके लिए समंदर से सुरक्षा और समंदर की और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। इसी तरह से जुनूबी भारत में श्रावण पूर्णिमा के आसपास जो है उपाक्रमा की धार्मिक परंपरा भी निभाई जाती है, जिसमें कई लोग वैदिक अध्ययन और आध्यात्मिक साधना से जुड़ी विशेष रसूमात अदा करते हैं। और इससे मुतालिक और कुछ जानकारी भी हम आपको आगे देंगे। फ़िलहाल आप हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए और हमारा साथ ऐसे ही देते रहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
2: जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, न्यूज ऑन एआईआर की आराधना चैनल डीटीएच तथा हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। हम श्रावण पूर्णिमा की बात कर रहे थे। श्रावण पूर्णिमा का एक और अहम पहलू दान और सेवा है। हिंदू धार्मिक मान्यता के मुताबिक पूर्णिमा के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना, अनाज, वस्त्र और दीगर ज़रूरी सामान दान करना एक पुण्य का काम स्वे तस्वुर किया जाता है, माना जाता है। ये दिन सिर्फ पूजा पाठ और धार्मिक रसूमात तक महदूद नहीं, बल्कि परिवार और समाज को जोड़ने का भी एक मौका है। लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, जो हमें आप अपनी आम जिंदगी में भी करना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी आपसे बोला कि हमें अपने आसपास देखना चाहिए, अपने रिश्तेदारों, अपने परिजनों, अपने घर के सदस्यों और अपने दोस्तों यारों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, उनके साथ अपना दुख दर्द बांटना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा ही दुख दर्द, हमारे दिल का बोझ कम होता है। श्रावण पूर्णिमा का एक गहरा संदेश प्रकृति के साथ तालमेल का भी है। श्रावण मास में वर्षा ऋतु अपने पूरे शबाब पर होती है। नदियाँ, तालाब और झीलें पानी से भर जाती हैं और प्रकृति में नई जान आ जाती है। इसलिए यह महीना और इसकी पूर्णिमा हमें जल, जंगल, जमीन और सभी जीव जंतुओं का

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: जी श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। आज यात्रा का 36वां दिन है और

आज के इस प्रसारण में हम आप तक ताज़ातरीन जानकारियां यात्रा के हवाले से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही में हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले चंद धार्मिक त्योहारों के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। और अभी हम बात कर रहे थे श्रावण पूर्णिमा से मुतालिक, और धार्मिक रूप से देखा जाए तो श्रावण पूर्णिमा पूर्णता और प्रकाश की प्रतीक है। पूरे चांद की रोशनी को आध्यात्मिक जागृति और अंधकार पर प्रकाश की जीत से जोड़कर देखा जाता है श्रावण पूर्णिमा। इसलिए इंसान को अपने अंदर के दुष्ट और दोष दूर करने, संयम इख्तियार करने और नेक काम करने की प्रेरणा देती है, जो हर एक इंसान को करना चाहिए। इंसान को दिन का कामकाज ख़त्म करके शाम को अपना अध्ययन करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि आज मैंने कौन से गुनाह किए, आज मैंने कौन से पाप किए, और उन पापों का पश्चाताप करना चाहिए, उनसे अपने भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने बनाने वाले की जो है इबादत, पूजा या जो भी वो करता हो करना चाहिए। यूं श्रावण पूर्णिमा सिर्फ एक धार्मिक तिथि नहीं बल्कि आस्था, भक्ति, परिवार, सेवा, दान, प्रकृति और संस्कृति का एक संगम है। भारत की अलग अलग परंपराएं इस दिन को अपने अपने अंदाज में मनाती हैं, लेकिन सभी का बुनियादी संदेश यही है कि प्रेम, सम्मान, सेवा और सच्चा सदाचार के साथ जीवन को बेहतर बनाया जाए। श्रावण पूर्णिमा के इस पवित्र पर्व पर आइए हम भी अपने अंदर नेक विचार, सेवा भाव और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी को मजबूत करने का संकल्प लें और अपने परिवार और समाज में प्रेम और भाईचारे की रोशनी फैलाएं। और कोशिश यही करनी चाहिए कि हर एक इंसान इन सब चीज़ों पर अमल करें। सिर्फ कहने और सुनने से बात नहीं बनती बल्कि इन चीज़ों को फिर अपने जीवन में हमें अमलाना भी होता है, इन पर अमल भी करनी होती है ताकि हमारा जीवन सफल हो और जिस कार्य के लिए हम इस धरती पर भेजे गए हैं उस कार्य में हम कामयाब हो जाएं। फिलहाल ये विशेष प्रसारण जारी है, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जल्द ही आप तक ताज़ा तरीन जो दर्शन रिपोर्ट है आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें।

0: अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं और अभी हमारे पास ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट आया है जिसके मुताबिक आज दिन के 11 बजे तक कुल मिलाकर 3400 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए, जिनमें से 1916 पुरुष, 1273 महिलाएं, 12 बच्चे, 21 साधु, 1 साध्वी और 177 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। जी हाँ, ये आंकड़ा हम तक दिन के 11 बजे तक का पहुंचा है। जैसे इसमें वृद्धि आती है हम आप तक और अपडेट्स पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है, आप इसका हिस्सा बने रहिए और हमें सुनते रहिए।

श्रोताओं, दिन के 12 बजने वाले हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली लिए चलते हैं आपको, जहां से आप समाचार सुनेंगे और समाचारों के बाद हम फिर से उपस्थित होंगे आपके समक्ष।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।
2: जय जय बाबा बर्फानी।
3: श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर, DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। अब से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं सबरीना महराज आपके साथ जुड़ी रहूंगी और यात्रा से मुतल्लिक अपडेट्स और दीगर जानकारी पहुंचाती रहूंगी। हमारे साथ बने रहे।
4: झूम झूम के नाचू मैं तो।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले
1: जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 105
2: डिग्री सेल्सियस।
1: जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं
2: FM बालतल छाता
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, लेटेस्ट अपडेट्स के अनुसार दिन के 12 बजे तक कुल 4,140 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 2,526 हैं, महिलाओं की संख्या 1,376, बालकों की संख्या 14 हैं, साधु 29, साध्वी 3, ट्रांसजेंडर 1 और सुरक्षाकर्मी 191 हैं। तो आप सुनते रहिए और हमारे साथ बने रहिएगा शाम 6 बजे तक, और आप सुनते रहिए भक्ति संगीत।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

जी श्रोताओं, अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज़, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

0: संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे आज मंजूरी दी। राज्यसभा ने सोमवार को इस विधेयक को पारित किया था। इस बीच संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उनके सम्मान में सदन में कुछ देर का मौन भी रखा गया। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन चर्चा संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये विहार आचरण आपका उचित नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। राष्ट्रपति ने देश के बुनकरों, उद्यमियों, डिजाइनरों, विद्यार्थियों और हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायालय की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के पद से इस्तीफा देने मात्र से कथित बेहिसाब संपत्ति के मामले में उसकी आपराधिक जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के 2 सप्ताह से अधिक समय तक जारी रहने के बाद ही राहुल गांधी ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आर्ट्स एफएम पहलगाम 100.1 MHz डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए आप बने रहिए और सुनते रहिए भक्ति संगीत।
1: हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुन ये सुनिश्चित
0: कुछ खास जानकारी
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए। हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
2: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

हाँ जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। पार्लियामेंट ने अदायगियों में ताखीर को खत्म करने और मुतनाज़े हल को सहूलत आमेज बनाने के एमएसएमई तरक्की के तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन के हंगामे के दौरान पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एनडीए के उन अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में बार बार रखना अंदाजी पर तशवीश का इजहार किया। भारत और चीन ने हकीकी कंट्रोल लाइन पर ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की। दोनों मुल्कों ने सरहदी इलाकों में अमन सुकून बरकरार रखने से इत्तेफाक किया। मुल्क आज हथकरघा का 12वां कौमी दिन मना रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस शोबे को सबकी शमूलियत वाली तरक्की का एक ताकतवर आले कार करार दिया। शुमाली भारत के बहुत से इलाकों में मूसलाधार बारिश

0: हो रही है। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का अपना पहला खिताब जीता है। और रक्षिता राम राज और अश्मिता चालिहा आसान में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट में बहुत छोटे छोटे और औसत दर्जे के कारोबार की तरक्की के तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने इसे आज मंजूरी दी है, अलबत्ता राज्यसभा ने इसे पीर को मंजूरी दे दी थी। पहली बार कार्रवाई मुलतवी होने के बाद आज ऐवान की कार्रवाई जब दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो एमएसएमई के वजीर जीतन राम मांझी ने बहुत छोटे छोटे और औसत दर्जे के कारोबार की तरक्की से मुतालिक 2006 के कानून में मजीद तरमीम का यह बिल पेश किया। इस बिल का मकसद अदायगियों में ताखीर को खत्म करना और मुतनाज़ हल को सहूलत आमेज बनाना है। बिल में कहा गया कि सरकारी शोबे के हर मरकजी कारोबार के तहत रियायत के निजाम के तहत एमएसएमई की अशिया या खिदमात की खरीदारी के लिए बिल लाजमी तौर पर पेश करे। इस बिल की मंजूरी के बाद प्रिजाइडिंग अफसर दिलीप साइकिया ने ऐवान की कार्रवाई जारी रखने की कोशिश की और एहतजाज करने वाले अरकान से अपील की कि वो ये कार्रवाई जारी रहने दें। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन के इस रवैये पर तशवीश जाहिर की है और कहा है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह हमेशा इजलास के दौरान आते हैं और देर रात तक मौजूद रहते हैं। हंगामा जारी रहा, प्रिजाइडिंग अफसर ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। अब यह कार्रवाई पीर को दिन में 11 बजे शुरू होगी। इससे पहले जब ऐवान की कार्रवाई दिन में 11 बजे शुरू हुई तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भारत छोड़ो तहरीक के मुजाहिदीन आजादी और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया।
1: लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन चर्चा संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये विहार आचरण आपका उचित नहीं है।
0: राज्यसभा ने भी नीट के मामले पर तलबा के मुजाहरों के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई समेत दीगर उमूर पर अपोजिशन के शोरगुल के बाद आज दिन भर के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी। दोपहर 12 बजे पहली बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने अपोजिशन के शोरगुल के दौरान वक्फे सवाल उठाया। शोरगुल के दौरान रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में कवच और सिग्नल निजाम की तंसीब से मुतालिक एक सवाल देने की कोशिश की, लेकिन वो अपना जवाब मुकम्मल नहीं दे सके क्योंकि शोरगुल जारी रहा, जिस पर चेयरमैन ने दिन भर के लिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। अब ये कार्रवाई पीर के रोज दिन में 11 बजे शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपनी रिहायशगाह पर नाश्ते के दौरान एनडीए में शामिल होने वाले नए मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात की। इनमें एनसीपीआई और शिवसेना के अरकान पार्लियामेंट भी शामिल थे। मीटिंग के बाद पार्लियामेंट अहाते में नामानिगारों से बात करते हुए शिवसेना की अरकान पार्लियामेंट ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की कार्रवाई में बार बार रखना डालने पर तश्वीश जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं कि बार बार रखना डालने की वजह से ऐवान में नौमुंतखब और बासलाहियत अरकान पार्लियामेंट को अपने ख्यालात पेश करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एनसीपीआई की मेंबर पार्लियामेंट शताब्दी रॉय ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एनडीए से वाबस्ता हर एक मेंबर का खैरमकदम किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया है कि क्या करने की जरूरत है और किस तरह अरकान पार्लियामेंट मुल्क की तामीर में मौसर तरीके से अपना ताउन दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में टेक्नोलॉजी के इंडियन इंस्टीट्यूट IIT की 57वीं तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तकरीब के दौरान 3,000 से ज्यादा ग्रेजुएट तलबा नीज उन 587 PhD स्कॉलर से भी जिन्हें डिग्रियां अता की जाएंगी खिताब करेंगे। जनाब मोदी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल समेत इंस्टीट्यूट के सबसे पुरवकार एजाजात भी नवाजेंगे। भारत और चीन के दरमियान कल नई दिल्ली में मुनाकिदा वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड इंडिया चाइना बॉर्डर अफ

0: WWCC की 36वीं मीटिंग के दौरान हकीकी कंट्रोल लाइन पर सूरत हाल का जायजा लिया गया और खुलकर बातचीत की गई। वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि दोनों फरीकों ने सरहद की हदबंदी, सरहदी इंतजाम, निजाम साजी और सरहदी ताउन से मुतालिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज संत कबीर हथकरघा एवार्ड और 2025 के हथकरघे के कौमी एवार्ड्स अता किए। 3 संत कबीर हैंडलूम एवार्ड्स और 19 नेशनल हैंडलूम एवार्ड्स समेत कुल 22 एवार्ड्स हथकरघे के बुनकरों को उनकी कारीगरी, इख्तरा और भारत के हथकरघे की रवायत को जारी रखने पर दिए गए हैं। आज नई दिल्ली में हैंडलूम के 12वीं कौमी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हजारों साल से हथकरघा भारत की सकाफत और तहजीबी सफर का एक लाजमी हिस्सा रहा है।
1: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: शुमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में आज शदीद बारिश हुई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली के लिए औसत दर्जे से लेकर शदीद बारिश के सिलसिले में येलो अलर्ट जारी किया है। इम्कान है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी इस माह की 12 तारीख तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमरीका में ग्रैंड चेस टूअर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज खिताब जीत लिया है। 20 साल भारतीय ग्रैंड मास्टर ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जवाहिर सिंदारूफ के खिलाफ आखिरी राउंड बराबरी पर खत्म करते हुए चैंपियनशिप जीती। प्रज्ञानंदा ने 5 रोजा मुकाबले में शुरू से ही सबकत बरकरार रखी। बैडमिंटन में आज आसान में भारत के रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स में खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। रक्षिता ने अपनी हमवतन साथी खिलाड़ी तन्वी शर्मा को क्वार्टर फाइनल में 21-18, 19-21, 19-21 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला एक और भारतीय खिलाड़ी अश्मिता चालिहा से होगा। अश्मिता ने नंबर 1 खिलाड़ी जापान की हिना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची हैं। मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पृथ्वी कृष्णा, मूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद ग्रागार की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मानवी चोंग और सो वोल ईक की मलेशिया की जोड़ी से मुकाबला करेगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने अदायगियों में ताखिर को खत्म करने और मतनाजा हल को सहूलत आमेज बनाने के एमएसएमई तरक्की के तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन के हंगामे के दौरान पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एनडीए के उन अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की जो हाल ही में पार्लियामेंट में शामिल हुए हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में बार बार रखना अंदाजी पर तशवीश का इजहार किया। भारत और चीन ने हकीकी कंट्रोल लाइन पर ताजा सूरत हाल पर बातचीत की। दोनों मुल्कों ने सरहदी इलाकों में अमन सुकून बरकरार रखने से इत्तेफाक किया। मुल्क आज हथकरघे का 12वां कौमी दिन मना रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस शोबे को सबकी शमूलियत वाली तरक्की का एक ताकतवर आलेकार करार दिया। शुमाली भारत के बहुत से इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का अपना पहला खिताब जीत लिया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद मिड डे न्यूज। The headlines. Parliament passes MSME Development Amendment Bill to address payment delays and simplify dispute resolution. Both houses adjourned to meet again on Monday amid opposition uproar. Prime Minister Narendra Modi meets newly joined MPs of NDA, expresses concern over repeated disruptions in Parliament. India and China discuss situation along line of actual control. Both sides agree to maintain peace and tranquility in border areas. President Draupadi Murmu presents National Handloom Awards 2025 at Rashtrapati Bhavan. Heavy rainfall lashes across several parts of northern India. In chess, Grandmaster R. Pragyananda wins made in St. Louis.

0: महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रूपए से लेकर 50,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले पहले सगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
2: क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आज

0: जीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
1: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
1: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीवियन इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
1: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुँचे।
2: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूँ।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपरा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के भाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलत फहमी और गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
0: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

0: संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
1: इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर आया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा

0: भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
1: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: जी श्रोताओं, आप दिल्ली से समाचार सुन रहे थे। आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, लेटेस्ट अपडेट्स के अनुसार दिन के 2 बजे तक कुल 4,569 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 2,767, महिलाओं की संख्या 1,484, बालकों की संख्या 18 और साधु उनकी संख्या 41, साध्वी 4, ट्रांसजेंडर 2 और सुरक्षा कर्मियों की संख्या 253 है। आप हमारे साथ बने रहिए और भक्ति संगीत सुनते रहिए।

श्रोताओं, मैं आपको बताती चलूं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, 100 FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और भक्ति का पवित्र अवसर है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु हिमालय की कठिन पहाड़ों से होकर यात्रा करते हैं। यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर एक, रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। सिर्फ वैलिड रजिस्ट्रेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ ही यात्रा की अनुमति मिलती है। दूसरा, हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। पवित्र गुफा लगभग 3800 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर दिल, सांस या हाई बीपी की गंभीर समस्या हो तो यात्रा से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। आप सुनते रहिए भक्ति संगीत और हमारे साथ बने रहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें।

0: और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: जी श्रोताओं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब। आइए सुनते हैं यात्रियों के हवाले से क्या कुछ अपडेट्स हैं इनके पास। जी जावेद साहब।
1: जी, पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा का सिलसिला यहाँ पहले निवास स्थान भगवती नगर से उसी हर्षोल्लास के साथ जारी है। और आज मौसम भी यहाँ अभी कभी बादल तो कभी धूप, और उसके साथ साथ हवाएं भी चल रही हैं, तो मौसम समझ लें आपकी बीच में है। हालांकि इस दौरान जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है उसमें बारिशें भी हैं, लेकिन कई बार बारिशें पहाड़ों और यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जिन वहीं पर होने की ज्यादा भविष्यवाणी होती है। मैदानों में अक्सर बारिशें कम हो रही हैं। इस दौरान आज भी यहाँ श्रद्धालु जो है बाबा बर्फानी के वो दर्शन करने की आस्था और विश्वास

0: जोश जज्बे के साथ जारी है और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अलावा प्रशासन के सभी संस्थान और निजी संस्थाएं और स्थानीय लोग श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुखद और आरामदेह बनाने की हर संभव प्रयास को जारी रखे हुए हैं। और लगातार यहाँ निवास स्थान भगवती नगर से श्रद्धालु रवाना भी हो रहे हैं। सिर्फ एक दिन मौसम की वजह से यात्रा स्थगित रही थी, लेकिन आज भी यात्रा बराबर
1: जारी है।
0: पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान कर गई और दर्शन कर वापस अपने घरों को लौट रहे यात्री भी बराबर पहुंच रहे हैं। और इस आज जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ से ट्रैफिक भी है और जिसकी वजह से जो तीर्थ यात्री है आज जो वहां से वापस लौट रहे हैं वो जम्मू पहुंच रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक सुबह जो यहां से रवाना हुए थे वो लगभग 11 बजे के आसपास उन्होंने घाटी की तरफ उन्होंने अपना प्रस्थान कर लिया था। तो वो आज भी निवास स्थान भगवती नगर में सुबह तड़के यहां से रवाना होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 926 रही। संख्या जरूर कम हुई है लेकिन श्रद्धालुओं का जो जज्बा बाकी है और इस जत्थे में हमेशा पुरुष महिलाएं साधु साध्वी और कई बार बच्चे भी होते हैं। और ये जो वाहनों में जो श्रद्धालु बाबा बरसानी के द्वार की तरफ होते हैं उनके लिए तमाम तरह की जो प्रोटोकॉल है या सुरक्षा कवच है उसको बराबर उसी तरह से रखा गया है जिस तरह से पहले था। तो जानकारी के अनुसार बेशतर श्रद्धालुओं का ये जत्था अपने वक्त पर बाबा बर्फानी के मुख्य द्वार बालटाल पहुंच गया था और उसके बाद पहाड़ी श्रृंखलाओं की तरफ भी रवाना होने की तैयारियां जारी है। तो लगातार रवाना हो रही बाबा बर्फानी की यात्रा और इसका प्रबंधन उसी क्रम के साथ जारी है। पहले निवास स्थान से लेकर पवित्र गुफा के आखिरी स्थान तक श्रद्धालुओं की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता के साथ जारी रखा गया है। यात्रा के दौरान अनुशासन और एडवाइजरी का पालन भी हमेशा से अनिवार्य है और उसमें किसी तरह का कोई बात नहीं है कि ना उसका पालन हो, क्योंकि खास तौर पर यहाँ श्रद्धालुओं को इसी बात की खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है कि जिस तरह से एडवाइजरी का पालन होना चाहिए उसको पूरी तरह से रखा जाना चाहिए। और श्रद्धालुओं को भी इस बार जो श्रद्धालु भी है लगभग आज 29वां जत्था था आज का ये, और श्रद्धालु भी बराबर उन सारी एडवाइजरी का पालन भी कर रहे हैं और प्रबंधन और सेवा भाव के साथ जो यात्रा को जाने की इजाजत देते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है जो प्रबंधन में लगे हुए हैं, सेवा समिति में लगे हुए हैं और सेवा भाव के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत भी करते हैं और यहाँ की मेहमान नवाजी मोहब्बत और प्यार को बराबर अपनी तरफ से बराबर जारी रखे हुए हैं। सिर्फ उम्मीद है कि यात्रा मौसम की परिस्थिति के दौरान अभियान भी सुरक्षा के साथ जारी रहेगी। सिर्फ मौसम की परिस्थिति में ही कई बार यात्रा स्थगित रही है लेकिन अभी तक मौसम बिल्कुल ठीक है और राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत भी बिल्कुल ठीक है जिसकी वजह से यात्रा सुखद तरीके से
1: जारी है। जी जावेद साहब, ये बताइएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे यात्रियों के लिए कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं?
0: देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले दिन से ये प्राथमिकता थी यात्रियों के लिए श्रद्धालुओं के लिए प्रबंधन की। अब क्योंकि तीर्थ यात्री जो है खासतौर पर बाबा बरसानी के, हालांकि जम्मू शहर जो है ये पर्यटन के हिसाब से धार्मिक पर्यटन यहाँ सबसे ज्यादा है जिसकी वजह से श्रद्धालुओं का आना जाना पूरे साल भर रहता है खासतौर पर माता वैष्णो देवी के द्वार की तरफ। लेकिन बाबा बरसानी के जो श्रद्धालु हैं उनके लिए खासतौर पर हेल्प डेस्क है, उसके अलावा यात्रियों को अब सीधे निवास स्थान भगवती नगर भी लाया जाता है जहाँ पर रहने पीने खाने और आराम करने और उसके अलावा जो वहाँ पर पूजा अर्चना और बाकी जो स्थानीय कलाकारों के जरिए भजन होते हैं तो उसमें खास तौर पर जो श्रद्धालु हैं वो हिस्सा भी लेते हैं। और किसी तरह की कोई ऐसी, क्योंकि अंदर ही उस परिसर में लगभग 4000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के रहने

0: व्यवस्था है, लेकिन अब क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई है तो व्यवस्थाओं को लेकर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। यहाँ खाने पीने की, रहने की, आराम करने की, बिजली की, पानी की, तमाम तरह की सुविधाएं लगातार इस फ्लोर में रखी गई है और जो कर्मचारी यहाँ पर ड्यूटी पर हैं वो बराबर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। कई विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी निवास स्थान भगवती नगर में लगाई गई है। सुरक्षा एजेंसियों के अलावा जैसे मैं आपको कहूँ कि जल विभाग की, पीडीडी विभाग की, जो बिजली का विभाग है, उसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कर्मचारी हैं जो साफ सफाई का ध्यान रखे हुए हैं, और उसके अलावा जिस तरह से यात्रा को स्वच्छ भारत के साथ जोड़ने की जो कवायद है लगभग सालों साल से चलती आ रही है, पर खास तौर पर अमल हो रहा है, खास स्पेशल टीमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में यहाँ लगाई हुई हैं, जिससे माहौल बहुत अच्छा है। और ये जो निवास स्थान भगवती नगर है तरीके पट पर मौजूद है और इसमें अगर गर्मी कई बार होती भी है लेकिन यहाँ तरीके तट पर हवाएं अब अच्छी चलती हैं। सावन का महीना है, खासतौर पर श्रद्धालु भी इस महीने में बाजारों में घूमने के अलावा पूजा अर्चनाओं में खासतौर पर बिजी रहते हैं। तो जो यात्रा का जो भाव है वो बिल्कुल जारी है और हमें उम्मीद है कि ये आगे अंततः तक भी ये जारी रहेगा।
1: जी, यात्रियों के हवाले से इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए जावेद मेहराब, आपका धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ जम्मू से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब, जिन्होंने यात्रियों के हवाले से एक अहम जानकारी हम तक पहुंचाई है। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए भक्ति संगीत।

0: जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनंतनाग से हमारे संवाददाता एस तारिक साहब, जो कि हमारे साथ अमरनाथ यात्रा या यात्रियों के हवाले से अहम अपडेट्स साझा करेंगे। जी तारिक साहब,
1: बहुत शुक्रिया सबरीना जी।
0: जी,
1: 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के आज 28 दिन पूरे हो गए हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में मौसम की अहम भूमिका रहती है, तो मैं मौसम के बारे में विवरण दूंगी।

0: Erdem Çeşil'e ve Nazlı Yatrak Yıkılır ve Bakan Yatramarı Parmoş'un Hadi Bukhari Badun Zegira Zeyni Oğur Cuhana Bana Zeyni Ka Kudumanda. Kendi bari Çeklu Mehmet Benim tam Tatman Lagbog Bara Degri Sentigret Oğur Hadi Tam Tatman Lagbog Bara Gera Degri Sentigret Ka O Erdem Adar Şibar Oğur İki Atbaz Ke Çeklu Mehmet इस समय कहीं कहीं धूप निकलने के साथ आकाश आधा बादलों से घिरा हुआ है या अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड और शाम के समय 12 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का अनुमान है। गंगनवाड़ी शिशनाग पंचतवी से लेकर चलिए अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा तक ऊंचाई वाले मार्ग पर अधिकतम बादल छाए रहेंगे। मौसम मौसमियात ने कहा है कि यात्रा मार्ग के ऊंचाई वाले भागों में तत्काल कहीं कहीं हल्की धूप छाई रह सकती है जबकि दिन के दौरान या शाम के समय हल्की बूंदाबांदी या लगभग वर्षा का 10-20% तक अनुमान है। हम किसी भी बड़ी वर्षा या मौसमी गतिविधि की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान हवा की स्थिति हल्की रहेगी जिससे मौसम ठंडा और सुहाना महसूस होगा। आज भी पहलगाम मार्ग से श्री अमरनाथ की यात्रा को फिलहाल स्थायी रूप से निबंधित रखा गया है। इधर जम्मू के भगवती नगर अमरा से बाल्मी मार्ग के लिए बयानी छोटी बड़ी वाहनों में 926 यात्रियों का जटा गाड़ी के प्रवेश करके बाल्मी मार्ग पहुंच गया। जटे में 693 पुरुष 178 महिलाएं 23 साधु और 21 साधु शामिल है। तो 57 दिनों की यात्रा के आरंभ से अब तक 4,71,588 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन कर चुके हैं जबकि गुजश्ता दिन 659 श्रद्धालु ने पवित्र गुफा में दर्शन किए जबकि रिपोर्ट फाइल करने तक आज बाबा बर्फानी के द्वार दर्शन प्राप्त करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5,000 पहुंच गई है। इस महत्वपूर्ण यात्रा के सफल संचालन और अंतम व्यवस्था की को संक्षिप्त बनाने के लिए सभी विभाग के जो समन्वय के साथ अपना प्रकृति निभाना रहे हैं और ताकि श्रद्धालु को सुरक्षित
1: जी तो हमें बताइए जी जी तारीख साहब हमें बताइएगा अभी फिलहाल बाबा बर्फानी के ये जो दर्शन है वो हमारे श्रद्धालु या यात्री कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि मौसम भी आफी ने कहा साफ है ठीक है तो इतने में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कैसी जो है कैसे इंतजाम उनके लिए किए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है या मैंने खुद भी देखा है पहले दिन से लेके अब तक जो पहले दिन में वो भी व्यवस्थाएं रखी गई थी जो प्रशासन के द्वारा या यात्रा जो भी विभाग है वो बराबर एकदम वही है कोई तब्दीली नहीं आई है किसी भी जगह हालांकि पहलगाम क्षेत्र में आप पता ही है कि हफ्ता भर से ज्यादा यात्रा निलंबित रही है और उसके बावजूद भी वहां हर एक विभाग के अधिकारी वहां बिल्कुल इंटैक्ट है। हर कहीं भी अगर यात्री आती है तो वो बराबर अपनी सुविधा बराबर रखेंगे। अभी भी यात्रा मार्ग पर जितने भी पहलगाम चलने के चंद्रों तक ये गुफा तक जितने भी लंगर है वो बिल्कुल इंटैक्ट है कोई तब्दीली नहीं आई है। जितने एम्प्लॉय मुख्य विभागों से आए हुए अधिकार है वो वहाँ मौजूद है हर एक इंतजाम मौजूद है जहाँ जहाँ भी कैंप लगे हुए हैं वहाँ टैंकर्स को जो हटे हुए उनको वहीं पर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि यात्रा दोबारा पहलगाम से शुरू हो और उनकी सहायता और उनकी जो हिम्मत के लिए वो खड़े रहे।
1: जी तारिक साहब क्या अभी आपके पास अपडेट है कि अभी तक बाबा बर्फानी के दर्शन कितने यात्रियों ने प्राप्त कर लिए हैं।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये मैं बता दूंगा आपको कि जो हमें मैंने भी पहले भी बताया था कि अभी तक 4,50,000 से ऊपर तो हो गया है। ये तकरीबन जो टारगेट को जाएगा वो 4.5 लाख तक जाएगा जबकि प्रशासन के पास जो टारगेट था वो 4.5 लाख का था। इस तरीके से आज भी 5,000 अभी तक अभी तो दर्शन का जो प्रक्रिया है वो जारी है सिलसिला अभी तकरीबन 5 बजे तक जारी रहेगा। अभी भी दर्शन के लिए जो भगत आ रहे हैं तो वो चल रहा है इस तरीके से अभी
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका हमारे यात्री दोस्तों के लिए इतने अच्छे अपडेट देने के लिए धन्यवाद आपका
0: बहुत शुक्रिया।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ एस तारिक, अनंतनाग से हमारे संवाददाता, जिन्होंने यात्रियों के हवाले से अहम अपडेट्स पहुंचाई हैं। आप बने रहें और भक्ति संगीत सुनते रहें, हमारे साथ लगातार बने रहें।

0: जी श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद तस्कीन, जो कि बानिहाल से हमारे संवाददाता हैं, मौजूद हैं और अमरनाथ यात्रा के हवाले से अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। जी
1: जी शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि आज सुबह जो 29 से देश में बालतल के लिए जम्मू से ट्रैफिक रवाना किया गया श्री अमरनाथ यात्रा का, तो वो कश्मीर की तरफ करीबन 12 बजे के आसपास पार कर दिया गया यहाँ बानहाल काजीगुड टनल से। तो इस दौरान जो वापस ट्रैफिक कश्मीर से आ रहा था बालतल से जम्मू की तरफ, तो उसे भी रामबन डिस्ट्रिक्ट से गुजार कर जम्मू की तरफ रवाना किया गया। हाईवे इस वक्त ट्रैफिक चल रहा है, जो दोतरफा ट्रैफिक होता है वो इस वक्त रन कर रहा है, दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रहा है और ट्रक्स को एक तरफ से छोड़ा जाता है मुतबादल दिन पर, अल्टरनेट डे पर। इस दौरान जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, वो भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से, इसका जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत नुकसान हुआ था हाईवे को पिछली बारिशों की वजह से, तो उसका एक रिव्यू करने के लिए वो वहां रुके। उन्होंने हाईवे के कई मुकामात का जायजा लिया, उनके साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हुकाम थे, ट्रैफिक पुलिस के SSP थे, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट SSP थे रामबन के हमारे, और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर रामबन और बाकी हुकाम थे उनके साथ। उन्होंने एक रिव्यू किया इसका और बाद में उन्होंने नामा निगारों को बताया कि हाईवे का जो स्ट्रेच है ये बारिशों की वजह से थोड़ा खराब हुआ है, बारिशें हुई है उस वजह से इसको डैमेज हुआ है। तो उसके बावजूद उन्होंने तारीफ की नेशनल हाईवे की और ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की कि उनकी

0: रही है। सुबह से ही हल्के हल्के बादल हैं, वो धूप भी बीच बीच में निकलती रही हाईवे पर। अलबत्ता ये जो मौसम जो है मजमूई तौर पर खुशगवार रहा, अलबत्ता जो जो थोड़ा सा जो ह्यूमिडिटी का था वो असर रहा आज, लेकिन फिलहाल ट्रैफिक चल रहा है। और सीएम भी अब रामबन चंद्रकूट से, उन्होंने अब चंद्रकूट के मुकाम पर थोड़े रुके, वहां पर दाल चावल राजमा घी और चटनी वगैरह अनारदाने की बड़ी मशहूर होती है पीड़ा की, तो वहां पर उन्होंने लॉन्च किया, तो वो अब कश्मीर की तरफ रवाना हो रहे हैं। इस दौरान जो काफले थे, दोनों काफले जो रामबन डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरे कश्मीर की तरफ, बाल नल के रास्ते पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो रहे हैं। जो वापस दर्शन के बाद यात्री आ रहे थे तो वो भी जम्मू की तरफ रवाना किए जा रहे हैं, और ट्रैफिक का सिलसिला हाईवे पर फिलहाल जारी है।
1: जी मुझे ये बताइए कि अभी तक क्या कुछ अपडेट है आपके पास, कितने यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं?
0: अभी जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट उनका कहना है कि अब तक 4,71,000 जो आज सुबह का मतलब रात तक का जो फिगर से उनके मुताबिक 4,71,000 से ज्यादा यात्री, यानी 5,00,000 के करीब आज शाम तक वो हो जाएगा या होने वाला होगा। तो इस तरह जो अभी तक 5,00,000 के करीब यात्री जो है दर्शन कर चुके हैं, जबकि हाईवे से जो जम्मू के भगवती नगर एरिया से जो रोजाना की बुनियादों पर जो कार्रवाई भेजी जाती है श्री अमरनाथ यात्रा की, बालतल और पहलगाम के से जो अब तक भेजे गए, हालांकि पहलगाम पिछले कई रोज से बंद है, जो मौसमी खराबी हुई उसके बाद से इस रूट को थोड़ा सा मरम्मत के लिए रोक दिया गया है उस पर यात्रा को। तो अलबत्ता कुल मिलाकर जो अगर भगवती नगर से कहेंगे तो अब तक 1,44,439 यात्री आज सुबह तक जम्मू से मतलब भगवती नगर के बेस कैंप से कश्मीर रवाना किए जा चुके हैं, और कुल मिलाकर 4,71,000 का रात तक जिन्होंने दर्शन किए थे पवित्र गुफा के अब तक। ये बहुत बड़ा फिगर है अगर कहा जाए, इतनी मौसमी खराबी के बावजूद भी 4,71,000 यात्री अब तक इतने 29 बेच में दर्शन कर चुके हैं।
1: जी मुझे ये बताइए हमारे यात्रियों के लिए यात्रा की सुविधा कैसे चल रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें क्या रोल रहा है, और किस तरह की आसाइश जो है वो पहुंचाई जा रही है यात्रियों के हवाले से?
0: देखिए अगर लखनपुर से हम कहेंगे यहाँ कश्मीर तक, तो जगह जगह पर जो यात्रियों के लिए खसूसी तौर कुछ मुकामात रखे गए हैं, जैसे फिर जम्मू हम कहेंगे, उसके बाद चंद्रकूट, उसके बाद बानहाल जो मेन स्टेशन है, जम्मू डिवीजन की ही बात करूंगा, आला इंतजाम आते हैं, पूरा जो इंतजाम है एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको रोजाना सुबह डिप्टी कमिश्नर रामबन, SSP रामबन मिलेंगे आपको, रामबन जो चंद्रकूट के यात्रा निवास है वेलकम करने के लिए यात्रियों का। इसी तरह रोजाना उनका जो 3 बजे के बाद रोजाना, ये मतलब बीच में ये जोड़ता चलूं कि जो 3 बजे के बाद किसी भी यात्री या टूरिस्ट गाड़ी को, जो अनरजिस्टर्ड यात्री कश्मीर आते हैं, उन्हें 3 बजे के बाद बानहाल से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती, और 2 बजे के बाद उन्हें चंद्रकूट के यात्रा निवास से आगे कश्मीर की तरफ बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती, उन्हें यहीं रोका जाता। तो इनके पास भी रोजाना की बुनियादों पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है, नोडल ऑफिसर्स है, जो सेक्टर ऑफिसर्स है, वो पूरी मतलब चाको चौबंद है, अगर कहेंगे तो कम अज कम कमोबेश करीबन 250 से 300 मुलाजिम जो है स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, वो इन्वॉल्व है इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए, यात्रियों को फैसिलिटेट करने के, उनके लिए मसाइल को मतलब कोई मसला पैदा न हो उसके लिए, ताकि हर तरह की जो उनके लिए जो आसाइश रखी गई तो उसका उनका बराबर लाभ मिल रहा, फायदा ले रहे हैं वो। और अभी तक वो जोश और खरोश जो है पहले दिन था वो आज भी जारी है और मुसलसल ये जारी है, और मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का इस पर नजर रहता है, मतलब सेहत और सफाई का, बिजली का, पानी का, बाकी जो इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, उसके लिए जो हॉस्पिटल छोटे मोटे कायम किए गए, डॉक्टर्स अराउंड द क्लॉक बैठे होते हैं, तो यानी इंतजाम का तो कोई वो कहेंगे नहीं कि कोई इसका कोई और मुतबादल हो, इतना बढ़िया इंतजाम किए गए हैं पूरे रूट पर, और खासकर जो ये जो डिजिग्नेटेड जो सेंटर है, जैसे चंद्रकूट का यात्री निवास है जहाँ 5,000 से जायद यात्रियों को रोकने की गुंजाइश है, इसी तरह फिर बानहाल में वहां पर भी यात्रियों को रोका जाता है अगर जरूरत पड़ती है, या 3 बजे बाद जो वहां हाल्ट होते हैं तो उनको वहां पर खाने पीने और रहने का इंतजाम किया जाता है। इससे इंतजाम का मतलब कोई तोड़ नहीं है, बहुत जबरदस्त इंतजाम, मतलब पिछले सालों के मुकाबले में कहेंगे तो इस साल बहुत ज्यादा अच्छे इंतजाम।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहम्मद तस्किन साहब बेहद आपका शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे यात्री दोस्तों के लिए, उनके लिए एक अहम जानकारी आपने साझा की है, बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी शुक्रिया।
1: तो श्रोताओं ये थे हमारे साथ मोहम्मद तस्कीन, हमारे संवाददाता बानिहाल से, जिन्होंने हमारे यात्री दोस्तों के लिए एक अहम जानकारी साझा की है, और आप बने रहे

0: हमारे साथ और भक्ति संगीत सुनते रहिए। वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, DTH और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, मौसम बदलने के लिए तैयार रहें। बारिश, ठंड और तेज हवा कभी भी हो सकती है, इसीलिए गर्म कपड़े, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज साथ रखें। सिर्फ आधिकारिक रूट का ही इस्तेमाल करें और सुरक्षा बल और प्रशासन के निर्देशों का हमेशा पालन करें और पर्यावरण को साफ रखें। प्लास्टिक या कचरा इधर उधर ना फेंकें, डस्टबिन का ही इस्तेमाल करें। आप बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें भक्ति संगीत।

0: श्रोताओं, आप श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण FM बालतल और FM पहलगाम और DTH और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए सुन रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं गांधरबल से हमारे संवाददाता रहीम रिजवान साहब, जो कि अमरनाथ यात्रियों के हवाले से हम तक जो है अपडेट पहुंचाएंगे। क्या कुछ खास अपडेट है रहीम साहब, बताइए।
1: ये बालतल मुख्य मार्ग से तीर्थ यात्रा सुचारू रूप से आज भी जारी है। बीते दिनों की तरह आज भी यात्रियों को बालतल बेस कैंप से सुबह सवेरे पवित्र गुफा की ओर रवाना कर दिया गया। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज सुबह सवेरे 4 बजे से 7 बजे तक 4,890 श्रद्धालुओं को दुमेल कंट्रोल गेट से पवित्र गुफा की ओर रवाना कर दिया गया। जिन यात्रियों ने आज सुबह सवेरे ये दुमेल कंट्रोल गेट पार किया, उनमें 2,764 महिलाएं, 2,764 पुरुष, 1,467 महिलाएं, 23 बालक बालिका, 66 साधु सात साधियां, 3 ट्रांसजेंडर एवं 560 सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। तो इस तरह बम बम बोले हर हर महादेव का पवित्र नाद करते हुए ये श्रद्धालु काफी जोश और जज्बे के साथ पवित्र गुफा के और रवाना हुए। ऊंचे पर्वतों के बीच हर रोज ये यात्री सफर करते हैं ताकि वो बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से प्राप्त होंगे। तो इस दौरान जिला प्रशासन ने हर पड़ाव पर, जो ये 14 किलोमीटर का कठिन रास्ता है, इसके हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी है ताकि तीर्थ यात्रियों को पवित्र सफर के दौरान किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि ये 14 किलोमीटर का कठिन रास्ता जो है, जो हर रोज इन यात्रियों को पैदल हो, गोडू या खचरों या डांडी पे सवार होकर पवित्र गुफा के और दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं, और इस दौरान उन्हें सफर के दौरान ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। हम चिकित्सा विभाग ने हर जगह हर पड़ाव पर चिकित्सा केंद्र कायम किए हैं, और जहाँ उन्हें उच्च स्तर की सुविधाएं जो है, चिकित्सा सुविधाएं या ऑक्सीजन की फैसिलिटी जो है वो वाफिर मकदार में उन्हें फराहम की जाती है ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो यात्री अच्छे तरीके से शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंच रहे हैं, और जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज 3 बजे तक 1,145 यात्री शिवलिंगम का दर्शन करके एक बाद धीरे धीरे धीरे बालतल बेस कैंप पहुंचे। बालतल बेस कैंप पहुंचने वाले इन श्रद्धालुओं में 736 पुरुष, 212 महिलाएं, 8 बालक बालिका, 17 साधु एवं 172 सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। अगर हम बीते रात के दिन बात करेंगे गुज़श्ता दिन की, तो गुज़श्ता रोज भी 642 श्रद्धालुओं ने शिवलिंगम का दर्शन किया, और वे श्रद्धालु सुरक्षित बालतल बेस कैंप पहुंचे, जिनमें 299 पुरुष, 190 महिलाएं, 11 बालक बालिका, 5 साधु, 1 ट्रांसजेंडर एवं 146 सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। इन यात्रियों ने रात्रि विश्राम के बाद यहाँ रात्रि विश्राम किया, और उसके बाद आज सुबह सवेरे कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की तरफ रवाना कर दिया गया। तो अगर हम सुरक्षा की बात करेंगे तो सुरक्षा के भी न सिर्फ श्रीनगर कारगिल राजमार्ग पर या बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक जगह चारों ओर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, जिसकी निगरानी बाजाब्ता तौर SSP गांधरबल सुधांशु दामा कर रहे हैं। हालांकि जिले प्रशासन के अन्य विभागों के अधिकारी जो हैं वो भी जगह जगह तैनात रखे गए हैं, और जिसकी निगरानी बाजाब्ता तौर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर कर रहे हैं, और उनकी निगरानी में सब कुछ ये जो यात्रा तीर्थ यात्रा पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, इसकी निगरानी बाजाब्ता तौर डिप्टी कमिश्नर कर रहे हैं। इस तरह जिला प्रशासन के द्वारा किए गए व्यवस्थाओं को लेकर यात्री जो है वो संतोष व्यक्त कर

0: और उन्होंने बार बार आकाशवाणी को बताया
1: जी
0: कि इस वर्ष जिला प्रशासन ने यात्रियों के लिए हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं।
1: जी
0: तो वो बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि यहाँ का आनंद देखकर, यहाँ की सुंदरता देखकर, यहाँ की हवाएं देखकर, खासकर नाले सिंध का पानी जो है और उसके किनारे, जो ही वो गाड़ियों में मुख्तलिफ वाहनों में सफर करते हैं, तो इस बार यहाँ की सुंदरता देखकर वो यही दुआ करते हैं कि हमें, हम बार बार यहाँ आए और यहाँ की सुंदरता देखें और यहाँ अमन शांति जो है वो कायम रहे, जिससे ये श्रद्धालु बार बार पवित्र गुफा जाकर शिवलिंगम का दर्शन करके देश एवं घाटी की अमन शांति तथा विकास के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके साथ जब आकाशवाणी ने बात किया तो उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ के लोगों का व्यवहार जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनके ही योगदान से ये तीर्थ यात्रा जो है वो सफल हो जाती है। तो खुशायंद बात ये है कि यहाँ के मकामी लोग या बालताल से पवित्र गुफा तक जितने भी अधिकारी काम करते हैं, चाहे वो सरकारी विभागों के अधिकारी हैं या यहाँ के मकामी लोग हैं, घोड़े वाले, खच्चर वाले, डांडी वाले या छोटे छोटे दुकानदार जिन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें यहाँ लगाई हैं ताकि वो अपनी खदमा जो है वो मैसर रखेंगे यात्रा के दौरान, तो उनका व्यवहार यात्रियों के साथ कैसा रहा, यात्री वो व्यवहार देखकर संतोष व्यक्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम दो महत्वपूर्ण पड़ाव जो हमारे श्रीनगर कारगिल राजमार्ग पर आते हैं, या ट्रांजिट कम शादीपोरा या ट्रांजिट कम मणिगाम की बात करेंगे, तो यहाँ भी उनके लिए बाजाबता तो रात्रि विश्राम के लिए टेंट्स वगैरह लगाए गए हैं, जहाँ उल्टा बेडिंग का इंतजाम किया गया है। इसके साथ साथ शौचालय और भोजन के लिए लंगर लगाए गए हैं। तो वो व्यवस्थाएं देखकर जो यात्री है उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और इन दोनों ट्रांजिट कैंपों में प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है उसको लेकर यात्री संतोष व्यक्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसके गिर्द नवा में भी और पूरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, तो उसको देखकर यात्री बिल्कुल मुतमईन नजर आ रहे हैं। इस तरह बीते दिनों की तरह आज भी जो तीर्थ यात्रा है वो बालतल मुख्य मार्ग से सुचारू और धार्मिक रूप से जारी है। श्रोताओं, हम भी आशा करते हैं कि आपकी ये तीर्थ यात्रा जो है
1: सफल
0: रहे, तरीके में सफल रहे।
1: बिल्कुल, धन्यवाद आपका रहीम रिजवान साहब, हमारे यात्रियों के लिए इतनी अच्छी जानकारी और अहम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ रहीम रिजवान साहब, जो कि गांदरबल से हमारे संवाददाता हैं। इन्होंने हमारे यात्रियों के लिए एक अहम जानकारी साझा की है, हम तक एक जो है वो इम्पोर्टेंट जानकारी या अपडेट हम तक पहुंचाया है। आप बने रहे हमारे साथ और सुनते रहिए भक्ति संगीत।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।
1: जी श्रोताओं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता इमरान नायकू साहब। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ अपडेट्स हैं अमरनाथ यात्रा के हवाले से या यात्रियों के हवाले से। जी इमरान साहब, बताइएगा।
2: बिल्कुल, अमरनाथ

0: यात्रा 2026 जारी है और आज भी श्रीनगर के इस पांथा चूक ट्रांजिट कैंप से अलग अलग अमरनाथ जी यात्रियों के जत्थे पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किए गए। सबसे पहले आज सुबह मॉर्निंग में एक जो यात्रियों का जत्था था वो रवाना हुआ था, 150 से ज्यादा अमरनाथ जी यात्री उसमें थे। उसके बाद एक और जत्था जो है अमरनाथ जी यात्रियों का वो भी रवाना किया गया, और ये वो यात्री थे जो पूरी रात यहाँ पे जिन्होंने नाइट स्टे किया था, और आज भी यात्री यहाँ पहुंचे हैं और जो रात को यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे, यानी कि रात को वो ठहरेंगे और सुबह उनको यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि जैसे कि पहले दिन से हम अपडेट कर रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्रियों के लिए यहाँ प्रशासन की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारी सुविधाएं अरेंजमेंट्स रखे गए हैं, लंगर्स को लेके, खाने पीने की चीजें, जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, पावर की फैसिलिटी या बाकी बेसिक जो फैसिलिटीज है, सैनिटेशन का एक बेहतरीन यहाँ पे मैनेजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई है। और इसके अलावा श्राइन बोर्ड हो या फिर यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिक्योरिटी एजेंसीज हो, सारी अपनी जो खिदमत सर्विसेज है वो प्रोवाइड करे, लोकल जो सर्विस प्रोवाइडर्स है या जो वॉलेंटियर्स है वो अपनी जो खिदमत है वो इस यात्रा को लेकर जो है पहुंचा रहे हैं। तो अभी तक अमरनाथ जी यात्रा को लेकर हम देख रहे हैं कि काफी पुरामन तरीके से या पीसफुल तरीके से ये यात्री जारी है, यात्रा जारी है, और हर दिन हमारी अमरनाथ जी यात्रियों से बात हो रही है और फीडबैक हम हासिल कर रहे हैं अमरनाथ जी यात्रियों से जो यहाँ इंतजाम किए गए हैं। और काफी जो है हम देख रहे हैं कि यात्री प्रसन्न है, यानी वो खुश है और एक पॉजिटिव फीडबैक उनकी तरफ से मिल रहा है और कोई ऐसी ग्रीवियंस या कोई शिकायत नहीं है। इन द मीन टाइम हम देख रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्रियों के लिए जहां जहां पर प्रशासन की तरफ से ये ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं वहां कैंप डायरेक्टर के साथ साथ हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं, और डायरेक्टली फिजिकली या ऑनलाइन मोड पर भी यात्री अपनी शिकायत या अपनी असिस्टेंस हासिल कर सकते हैं। लेकिन एज सच हम देख रहे हैं कि कोई जो यात्रियों की शिकायत है वो नहीं आ रही है, और हर तरह की जो सुविधाएं है सरकार की तरफ से वो अमरनाथ जी यात्रियों के लिए रखी गई है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम थे, सीसीटीवी कैमराज के जरिए से यहाँ सर्विलेंस की जा रही है और हर मूवमेंट पर गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग और सर्विलेंस है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि जो श्रीनगर के लोक भवन में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का जो मॉनिटरिंग सेल एस्टैब्लिश किया गया है उसके जरिए से भी पूरी यात्रा को मॉनिटर किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर HMT में जो कायम किया गया उसके जरिए से पूरी यात्रा पर नजर रखी गई है, और ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो और इन केस कोई परेशानी, कोई असिस्टेंस की उनको जरूरत है हो या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम पेश आए, मुश्किलात आए, तो उसका विद इन नो टाइम या इमीडिएट बेसिस पे उसका रिजोल्यूशन हो जाता है और डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन के जरिए से उनकी असिस्टेंस और उनकी मदद कर रहे हैं। और साथ ही हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि वॉलंटियर्स या जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स है वो भी किस तरीके से इस यात्रा में अपनी जो खिदमत है या अपनी जो है वो दे रहे हैं, और उसको लेके भी हम देख रहे हैं कि यात्री उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। और कुल मिला के हम देख रहे हैं कि जो यात्रा अभी तक हुई है जिसमें करीबन 5 लाख अमरनाथ जी यात्रियों ने अभी तक पवित्र गुफा का दर्शन किया है, काफी वो खुश है और फीडबैक काफी पॉजिटिव है, और ये उम्मीद की जा रही है कि मौसम बेहतर हो। आज भी हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में काफी सुहाना मौसम है, हल्के से बादल छाए रहे लेकिन ठंडी हवाएं भी चली, और इस सुहाने मौसम के बीच में यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ से अमरनाथ जी यात्रियों को पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना भी किया गया।
1: जी बिल्कुल, तो मुझे बताइएगा क्या आपके पास अपडेट है कि अभी तक कितने यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं?
0: देखिए जैसे मैंने कहा कि इस साल आज जो कि 36वां दिन है, 36th days है आज अमरनाथ जी यात्रियों का, और जैसे कल शाम तक ये कहा गया है कि एक अच्छी और एक माइलस्टोन जो अभी तक यात्रा को लेके कश्मीर में यहाँ की प्रशासन ने अचीव किया है, और जिसका क्रेडिट पूरी यहाँ की आवाम को भी जाता है कि 2022 से अब तक लगभग 22 लाख अमरनाथ जी यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया है यात्रा को लेके जो जो डेटा सामने आया है।
1: जी
0: और इस साल भी अगर देखा जाए, डिस्पाइट कि एक वेदर की वजह से यात्रा डिसरप्ट रही, इसमें कुछ दिनों के लिए यात्रा को बंद भी करना पड़ा, और ये कि जो पहलगाम का रूट है वहां पे मेंटेनेंस के लिए यात्रा को रोकना पड़ा, लेकिन इस सब के बावजूद भी हम देख रहे कि इन 35-36 दिनों के दौरान तकरीबन 5 लाख अमरनाथ जी यात्रियों ने अमरनाथ जी का जो है दर्शन किया है। तो ये
1: किया
0: बियॉन्ड
1: है
0: एक्सपेक्टेशंस है कि
1: जी।
0: इतनी बड़ी तादाद में अभी

0: तक अमरनाथ यात्री आ रहे हैं और हर दिन हजारों की तादाद में यात्री बाबा बर्फानी का जो दर्शन है वो करके निकलते हैं। तो ये एक सिर्फ यहाँ की प्रशासन का एक क्रेडिट नहीं है, बल्कि हम यूं कहें कि यहाँ का हर एक वो शहरी, एक लोकल जो इस यात्रा में अपना योगदान पेश कर रहा है, या प्रशासन का हर एक अहलकार, एक छोटा सा मुलाजिम से लेके जो हायर ऑफिशियल्स है वहां तक, और खासकर यात्री जो बड़ी खुशी के साथ यहाँ पहुंचते हैं कश्मीर यात्रा के लिए, तो इसलिए ये एक कलेक्टिव एफर्ट भी है और हर एक के लिए ये क्रेडिट जाता है कि जिस पीसफुल तरीके से यात्रा जा रही है, और जिस पीसफुल तरीके से यात्रा जाने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में अमरनाथ जी यात्री देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे आ रहे हैं। और अच्छी बात ये भी है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की पहले से ही मैसेज थी कि वोकल फॉर लोकल, उसको भी किस तरीके से यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, जो एलजी साहब की तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई थी, अपील की गई थी यात्रियों को कि यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को वो एक्सप्लोर भी करें और उसको खरीदे भी, तो वो भी हम देख रहे हैं कि यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, यहाँ का हैंडलूम, या यहाँ के जो भी लोकल प्रोडक्ट्स है उसकी जो यहाँ खरीदारी हो रही है यात्रियों के जरिए से, और उसको देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है, तो उसका भी एक्सप्लोर हो रहा है। तो वो भी एक इस यात्रा के जरिए से एक अच्छी मैसेज भी जा रही है, और इकोनॉमी का या यहाँ जो मईशत का हिस्सा भी बन रहा है। तो इसलिए ये यात्रा सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट नहीं समझी जाती है, बल्कि मजहबी एतबार से ये तो अपनी एक अलग सेंस और अहमियत तो रखता ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हम देख रहे हैं कि एक कल्चरल इंटीग्रेशन, यहाँ की इकोनॉमी में अपना रोल, यहाँ के लोकल्स जिनका रोजगार इसके साथ वाबस्ता है, हजारों के तादाद में लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके साथ वाबस्ता है, तो ये इस यात्रा की यही खासियत और खसूसियत है।
1: जी बहुत धन्यवाद आपका इमरान नायकू साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है और यात्रियों के लिए एक खास और अहम जानकारी आपने साझा की है, धन्यवाद आपका। जी तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता इमरान नायकू साहब, जिन्होंने हमारे यात्री दोस्तों के लिए या उनके हवाले से अहम जानकारी साझा की है, एक अपडेट, अहम अपडेट हम तक पहुंचाई है। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जो अमरनाथ जी यात्रा जो है, श्री अमरनाथ जी यात्रा या यात्री जो इस वक्त बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि उनकी यात्रा सफल रहे, उनकी यात्रा सुखद रहे। और आप हमारे साथ बने रहें, और तब तक आप सुनते रहिए भक्ति संगीत।

जी श्रोताओं, एक जरूरी सलाह है आपके लिए। अकेले सफर ना करें, अपने ग्रुप के साथ ही चलें। और मौसम की जानकारी और आधिकारिक निर्देशों पर नजर रखें। अफवाहों पर भरोसा ना करें, सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं का ही पालन करें। बाबा बर्फानी के दरबार में श्रद्धा, धैर्य और अनुशासन के साथ यात्रा करें। आपकी सुरक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और बाबा अमरनाथ जी सभी यात्रियों पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबकी यात्रा सुखद, सुरक्षित और सफल हो। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, हम यही चाहते हैं कि आपकी यात्रा सुरक्षित रहे, सुखद रहे और सफल रहिए। सुनते रहिए भक्ति संगीत और हमारे साथ बने रहिएगा।

श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।

जी श्रोताओं, लेटेस्ट अपडेट्स के अनुसार दिन के 4 बजे तक कुल 5,009 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 2,858, महिलाओं की संख्या 1,533 हैं, बालकों की संख्या 25, साधु 60, साध्वी 7, ट्रांसजेंडर 3 और सुरक्षा कर्मियों की संख्या 533 हैं। और आप सुनते रहिए भक्ति संगीत, हमारे साथ बने रहें।

जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, एक आपसे

निवेदन है कि कैंप और कैंप के आसपास के इलाके में कचरा ना फैलाएं, प्लास्टिक और गंदगी को कैंप में जो डस्टबिन है डस्टबिन में ही डालें, और स्वच्छता और सुरक्षा यही है यात्रा की सच्ची भक्ति। और आपसे निवेदन है कि प्रशंसित संदेश ये है कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे उत्तम है। मौसम और मार्ग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़े, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी यात्रा सफल रहे, सुरक्षित और सुखद रहिए। हमारे साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा भक्ति संगीत।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ।

जी श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, पहाड़ों पर मौसम तेजी से बदलता है, इसीलिए वाटरप्रूफ जैकेट और थर्मल वियर साथ रखें। ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज का ही इस्तेमाल करें ताकि फिसलन भरे रास्तों पर पकड़ बनी रहे। हमेशा अपने समूह या साथी यात्रियों के साथ रहें और समय सीमा का ध्यान रखें। हम बस प्रार्थना यही करते हैं कि आपकी यात्रा सफल रहे, सुरक्षित और सुखद रहे। सुनते रहिए भक्ति संगीत।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें और अपनी शारीरिक जो क्षमता है उसके हिसाब से आगे बढ़ें और पर्याप्त पानी पीते रहें और हल्का भोजन करते रहें। सिर्फ आधिकारिक रूट और निर्धारित टाइमिंग का ही प्लान करें। सुरक्षा बल, पुलिस और प्रशासन के साथ या उनके निर्देशों का हमेशा सम्मान करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम बस प्रार्थना यही करते हैं कि आपकी यात्रा सुखल रहे, सुरक्षा और सफल रहे। हमारे साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा भक्ति संगीत।

0: श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आरती सुनने के लिए, तो आइए अब सुनते हैं आरती, और आप हमारे साथ बने रहिए, सुनते हैं आरती।
1: सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी शिव भक्तों का बाबा बर्फानी जी के इस पावन पवित्र अद्भुत धाम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी शिव भक्त बड़े ही पुण्य कर्मी हैं, जो आप सभी आज प्रातःकालीन आरती के दर्शन कर रहे हैं। MH1 चैनल के माध्यम से जो भक्तजन देश एवं विदेश में बाबा जी की इस पावन आरती की दर्शन कर रहे हैं, वह भी बड़े ही पुण्यकर्मी हैं। प्रिय बंधुओं, ये जो धाम है, ये त्याग का प्रतीक है। इस धाम में जब बाबा बर्फानी जी ने मां पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, तो उससे पहले उन्होंने अपने मार्ग में अपनी सभी जो जैसे अपने गण, अपना श्रृंगार इत्यादि सभी का अपने मार्ग में ही त्याग कर दिया। इसलिए प्रिय बंधुओं, आप भी इस त्याग को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि ये जो त्याग है, इस त्याग से ही आप बाबा बर्फानी से जो मिल सकते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमारे शास्त्र कहते हैं, ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवीषु खड़ एते नित्य दुखिता। जो लोग दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने इस धाम में आकर कुछ सीखना है, तो यही सीखना है, हमने त्याग क्या करना है। हमने अपने अंदर की ईर्ष्या का त्याग करना है, घृणा का त्याग करना है, हमें अपने जीवन में संतोष धारण करना है। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और अपने अंदर के अपने भीतर के क्रोध का त्याग करना है। जो क्रोध है, यही जो क्रोध है, ये हमारे और बाबा के बीच में जो दीवार है, इसलिए इस क्रोध का त्याग करें। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और हर बात पर शंका जो है, वो भी परमात्मा के साथ मिलन में एक वादा है। इसलिए हमें हर बात पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवीषु, और हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने जो हम जीवन में हम कर्म करते हैं, उनके आधार पर ही हमें अपने जीवन का जापन करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, इस धाम में हमें यही सीखना है, हमें ईर्ष्या करनी है तो अपनी अपने अंदर की बुराई से करनी है, घृणा करनी है तो अपने अंदर की बुराई से करनी है। हमें अगर संतोष हमारे अंदर नहीं है, तो किस चीज का नहीं होना चाहिए? परमात्मा से प्रेम का हमें संतोष नहीं होना चाहिए। और घृणा करनी है तो बुराई से, क्रोध से। प्रिय बंधुओं, इन सभी बातों को अपने जीवन में धारण करते हुए आज प्रातःकालीन

भजनों से बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी भक्तजन आज बोले बाबा ने हमें अवसर दिया है, तो दोनों हाथों से ताली का वादन करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बोले बाबा के सुंदर भजन का ध्यान करेंगे। बोलिए।

जी श्रोताओं, शाम के 6 बज रहे हैं। आप अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण सुन रहे थे। एफएम बालतल, एफएम पहलगाम और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ थे हमारे सहायक इंजीनियर जावेद अहमद लोन और इरशाद अहमद लोन और उनके साथ शौकत अहमद खान। और मैं हूं आपकी अदघोषिक सबरीना महराज और इस प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक। श्रोताओं, इसी के साथ आज की ये सभा यही समाप्त होती है। आपकी उम्मीद है कि आपकी यात्रा सफल रहे और कुशल रहे और सुखद रहे। दीजिए इजाजत।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

लक्ष्मण का समझाए के राम बहुले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

0: बीच धरती भीगती है जब हरियाली मुस्कुराती है और हवाओं में भक्ति का स्वर घुलता है, तब आता है सावन, यानी शिव आराधना का पवित्र महीना। सावन केवल ऋतु नहीं, एक भाव है, श्रद्धा का, समर्पण का और आत्म शुद्धि का। कहा गया है, सावने शिव पूजा फलम चतुर्गुणम भवेत, द्रव्य हीना तुया भक्ति ही सा मुक्ति फलदा स्मृता। अर्थात सावन में की गई शिव पूजा सामान्य दिनों की तुलना में अधिक फलदायी होती है, और यदि वह पूजा केवल भक्ति भाव से ही हो तो वह मोक्ष तक प्रदान कर सकती है। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को श्रावण सोम व्रत किया जाता है। यह व्रत जीवन की शांति और समृद्धि के लिए रखा जाता है। सोम व्रत करने से मन वांछित फल प्राप्त होता है। काशी विश्वनाथ, अमरनाथ, बैद्यनाथ, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम, ओंकारेश्वर, महाकाल, ये वो तीर्थ हैं जहां सावन के दौरान भक्तों का सैलाब उमड़ता है। सावन केवल शिवजी को जल चढ़ाने का ही अवसर नहीं है, यह समय है अपने भीतर उतरने का, अपने आप को पहचानने का, भक्ति और संयम के माध्यम से शिवत्व में बदलने का। शिव वैराग्य के देवता हैं, लेकिन साथ ही समरसता के भी प्रतीक हैं। उनकी पूजा हमें त्याग, धैर्य और संतुलन का पाठ पढ़ाती है। जब सावन की पहली बूंद धरती को छूती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो शिव के प्रिय मास का प्रारंभ हो गया हो। सावन यानी श्रद्धा, शिव भक्ति और आत्मशुद्धि का पर्व, और इस पावन मास में यदि काशी का स्मरण ना किया जाए तो भक्ति अधूरी रह जाती है। हर हर महादेव की दिव्य गूंज, मंत्रों की मधुर स्वर लहरियां और माँ गंगा के तट पर स्थित एक ऐसा स्थान जहां स्वयं भगवान शिव विराजमान है। हम बात कर रहे हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की। काशी जिसे मोक्ष की भूमि भी मानी गई है। कहा गया है, काशी क्षेत्रम महादेवम विश्वनाथम महेश्वरम अनादि नित्यम व्यक्तम शिवलिंगम नमाम्यहम। अर्थात मैं काशी क्षेत्र में स्थित अनादि, नित्य, अव्यक्त और महान भगवान विश्वनाथ शिवलिंग को नमस्कार करता हूँ। काशी वह भूमि है जहाँ भगवान शिव की साक्षात कृपा प्राप्त होती है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में एक प्रमुख स्थान रखता है। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश के हृदय स्थल में स्थित है। विश्वनाथ यानी विश्व के नाथ, संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति। इस मंदिर का इतिहास भी हजारों वर्ष पुराना है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख आता है। लंबे समय से यह स्थान आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से श्रावण मास और महाशिवरात्रि के समय यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ता है। काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनने के बाद से यह तीर्थ और भी दिव्य रूप में सामने आया है। विश्वनाथ मंदिर में दर्शन मात्र से ही आत्मा को शांति मिलती है। काशी के महत्व पर तो कहा जाता है, काश्याम मरणम मुक्ति ही, यानी काशी में मृत्यु का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति। यह वो स्थान है जहां जीवन और मृत्यु के बीच का भेद मिट जाता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर, गंगा के किनारे पर बसा, जिसकी गिनती विश्व के सबसे प्राचीन नगरों में होती है। यहाँ 80 से अधिक घाट हैं, दशाश्वमेध, मणिकर्णिका, 80 घाट, जिन पर भक्ति की गंगा अनवरत बहती है। और इन घाटों के बीच विशाल शिखर वाला मंदिर है काशी विश्वनाथ। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण, काशी खंड और अन्य अनेक ग्रंथों में आता है। माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं इस नगर के अधिष्ठाता हैं। यहाँ बने भव्य कॉरिडोर ने मंदिर को गंगा घाट से सीधे रूप से जोड़ा है। यह केवल निर्माण नहीं था, यह भारत की आध्यात्मिक चेतना का पुनरुद्धार था। अब यह परिसर लाखों श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक और दिव्य है। यह मंदिर आधुनिक तकनीक, प्राचीन आस्था और सांस्कृतिक गरिमा का संगम है। काशी अब सिर्फ तीर्थ नहीं, एक वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर है। काशी वह भूमि है जहाँ गंगा बहती है, जहाँ शिव बसते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सावन में आकाश में भी हर हर महादेव गूंज रहा हो। आइए इस सावन हम भी आस्था के इस अमूल्य तीर्थ को स्मरण करें, भक्ति और संस्कार के साथ काशी को नमन करें।
1: ओम नमः शिवाय। अभी आप इस कार्यक्रम में श्री

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

अत्र लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

अर्थात सिद्ध पुरुषो, गंधर्वो, यक्षो वगैरेथी, असुरो अने अमरो देवोथी सेवाता सिद्धि आपनारा ते सिद्धिदात्री देवी अमने तमने सर्वने सिद्धि आपनारा था। भारतीय दार्शनिक धारा प्रमाणे मुक्ति के मोक्ष ने एक मोटी सिद्धि कहेवामां आवे छे। एथी माताजी ने प्रार्थना करिए कि हे भगवती परांब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका सूर्यमंडल अंतर्गत जगद बीजा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवतात्मिका परांबा परांबा सिद्धिदात्री अपने अमे मोक्ष माटे प्रणाम करी। सिद्धिदात्री देवी नो आराधन करी त्यारे देवी मात्र नी आराधना नो सौंदर्य लहरी नो आ एक श्लोक शंकराचार्य जी नो स्मृति पथ मां आवे छे।

ही भगवती महाशक्ती की जी पुण्यात्मा होना निवासोमा लक्ष्मी रूपे, पापी जनों ने त्या दरिद्रता रूपे, तो शुद्ध चित्त वाळाओ ने त्या हृदय में बुद्धि रूपे, सत्पुरुषों में सिद्धि रूपे, कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूपे निवास करे छे। ए देवी समग्र विश्वनो कल्याण करो।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

मुरली बालकृष्ण की सबसे प्यारी सखी, जिसे मुरलीधर एक पल भी अपने से अलग नहीं कर पाते। गोपियां और स्वयं राधा भी मुरली से जलन महसूस करती। गोविंद के लिए बावरी हुई हर गोपी का स्वप्न था कि कान्हा उसे बांसुरी

एक दिन नटखट नंदलाला गोपाला माखन चोरी की लीला करते हुए मटकी तोड़कर माखन खाते हुए पकड़े जाते हैं और माता यशोदा के सामने लाए जाते हैं। महाकवि सूरदास जी के शब्द में सुनिए।

कन्हैया मुस्कुराकर बोले, हाँ मैया, मैंने ही माखन खाया। ऐसी बातें सुनकर माँ यशोदा कहती है कि अपने घर में क्या कमी है जो तू दूसरों के घर में जाकर माखन चुराता है। दूसरों की मटकी तोड़ने की तुझे क्या आवश्यकता। भगवान मैया को मटकी और माखन का रहस्य कैसे

यशोदा मैया आश्चर्य से उन्हें देखने लगती और कहती हैं, कन्हैया क्या तू सच बोल रहा है? कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ग्वाल बाल के रूप में कई देवता भी थे। माँ तू तो बड़ी भोली है ना, तू उन्हें पहचान भी ना सकी, मैं तुझे सब सच सच

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।